سفيها أو

بينكم فليس عليكم جناح.

और अगर तुम सफर पर हो और दस्तावेज लिखने वाला न मिल सके तो कोई चीज रहन बाकब्जा रखकर कर्ज ले लो, और अगर तुम में से कोई दूसरे को अमीन समझे यानी रहन के बगैर कर्ज दे दे तो अमानतदार को चाहिए कि साहिब अमानत की अमानत अदा कर दे, और अल्लाह से जो उसका परवरदिगार है डरे, और देखना शहादत को मत छुपाना, जो उसको छुपाएगा वो दिल का गुनाहगार होगा, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है, जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है। तुम अपने दिलों की बात को जाहिर करोगे तो और छुपाओगे तो अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा, फिर वो जिसे चाहे मग़फ़िरत करे और जिसे चाहे अजाब दे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब पर जो उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई ईमान रखते ही, और मोमिन भी सब अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसके किताबों पर और उसके पैगंबरों पर ईमान रखते हैं, और कहते हैं कि हम उसके पैगंबरों से किसी में कुछ फर्क नहीं करते, और वो अल्लाह से अर्ज करते हैं कि हमने तेरा हुक्म सुना और कबूल किया, ऐ परवरदिगार हम तेरी बख्शिश मांगते हैं और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही। दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। पलती रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदोशियों तक। अफसोस नहीं के अफसाने लिखे, वो अफसाने मबनी अफसुर्दगी पर। खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब, फिर रही बहार की कमी बस। किस्मत हमारे ही हाथ में है, उस पे इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब दर्द उठे। हम तो भरेंगे दोस्त,

एक मिनट रुकी, मेरा वेट कर। ओके देन जफी भाई टेक वन, कहाँ सुनना माफ कीजिएगा। शालीमार गार्डन में 5:30 बजे मेरा शूट के लिए हेयर एंड मेकअप, जल्दी मेरे शेड्स ला, लेकिन पहले चेक द पैरामीटर। गानों के बढ़ते डेसिबल, चेक पे बढ़ते डेसिबल, इट्स इनक्रेडिबल। मैं इसमत चुकताई, कैसे किस्मत खुलाई, आई थिंक अबाउट दिस एट नाइट। Give a bash at the bad in the mansion, mad at me, instinct animalistic. Mad magician, yeah, mathematician, I never take second position. I'm getting ballistic, cataclysmic, bilibulously, dekho meticulously. Love's very medicinal, say, love kiya maine kalam se, sach bola maine kasam se. Rang dekho kaise badalte, dikhte hain sabke, karte kab se, baatein pakki, baatein kacche. I've had enough of it, but I keep going, got no option but to keep flowing. Keep the toxic out of my zone, duck in the sheriff up me off of my throne. But before I gotta go, let me tell you this. One thing I need you to know, if you ever need a friend, you can call my phone.

0: अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है।
1: जो शहर जो घर सकरण आए सकरण जो आवाज
2: GFM 90.8
3: आरजी आ जिंदगी कुछ सोच कर विचार कर आरजी आ जिंदगी कुछ सोच कर विचार कर प्यार दे ए प्यार वठ कैसा न तकरार कर एडी आकड़ ए वडाई खाम खा आतो कई एडी आकड़ ए वडाई खाम खा आतो कई गुलफाम गुल सादो थी रह हर मानु सा तू प्यार कर हर मानु सा तू प्यार कर

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: कराची के पोश इलाके क्लिफ्टन में रोड़ी वासी डॉक्टर आकाश कतल वारसन जो केतरा ही कलाक तीन तलवार ते लाश रखी धरणो। मेयर कराची मुर्तजा बाब धरणे वारे हंध पहुतो। अज शाम ताई कातिल गिरफ्तार करण जे खातिरी मकतूल डॉक्टर जे वारसन धरणो खत्म करे छड़ियो। ज़ुल्फ़कार जूनियर भी यकजहती तौर धरणे में पहुतो। संदस चवण हो त हिते को बि महफूज नाहे। ॾींहुं ॾिठे जो डॉक्टर जो कतल बदतरीन बदमनीअ जो सबूत आहे। डॉक्टर प्रकाश जे वारसन जो चवण हो त प्रकाश खे ॾींहुं ॾिठे बैंक साम्हूं सरेआम क़तल कयो वियो। सिंधियुनि खे टारगेट करे क़तल कयो पियो वञे। पुलिस तमाशो ॾिसी रही आहे। अॼु शाम ताईं कातिल गिरफ़्तार न थिया त ॿीहर धरणो हणंदासीं। कंदकोट में लोलाई बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो। हिकु ॼणो क़तल ऐं मारिजी वियो। झंगेण थाणे जी हद में ज़मीन जे मामले तां झेड़े में फायरिंग जे नतीजे में मुरीद लोलाई मारिजी वियो। कंदकोट पुलिस वाके वारी हंधि पहुची लाश ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल कयो। कश्मोर वेझो RD-140 वटि BS फीडर खे लॻल घारो टे ॾींहं गुज़रण बावजूद बि बंदि न थियो। केतिरा ई ॻोठ ॿुॾी विया। पाणी घरनि में दाख़िल, ज़िंदगी मफ़लूज। फसुल पाणी हेठि अची विया। आपाशी इंतिज़ामिया गुम। चीफ इंजीनियर गुडू बैराज जा छिरकाईंदड़ इंकशाफ़ साम्हूं अची विया। KTN न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चीफ इंजीनियर गुडू बैराज जो चवणु आहे त घारो हथ सां हयो वियो आहे। अणॼातल माण्हुनि ख़िलाफ़ FIR दाख़िल कराए छॾी आहे। गफ़लत जे इल्ज़ाम हेठि सब इंजीनियर ऐं SDO समेत टिनि अमलदारनि खे मुअतल करे मथनि कार्रवाई सेक्रेटरी आपाशीअ खे सिफ़ारिश करे छॾी आहे।

0: एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
2: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
1: अब दर्द को कहें अलविदा
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
1: जी हाँ,
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ये ऑइंटमेंट
1: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
2: दर्द, सोजिश
1: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
2: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
2: पट्ठों के खिंचाव,
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
2: और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

से मैके मिले दर्द बहुत कभी तू भी मिल दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल आज फिर आई ना तू इंतजार रहा मुस्तकिल तवील है गम की शाम कहानी मोहब्बत की मुख्तसर नजर सानी करो जरा सी कदर करो मेरी कला की

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद से कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GFM 88 नेटवर्क
0: सिंध की आवाज।
4: यार ताहिर खैर ता है यार, तुझा वार बिखरियल हाल उजड़ियल खैर ता है यार।
5: बस बाख्तियार कड़ा तो सूर पुछी सच यो तो मुख्य इश्क बिल्कुल तबाह कर छो यार, इश्क मुझा खंधा ही खड़ी छ
4: यार, असा के इश्क टेकाय छ।
5: बस बाख्तियार मुझे इश्क पा क्यों

0: अमरीका ईरान विच में अब नफरमस्तान शुरू थियल चकतान खत्म न थी बिन्हीं मुल्कन जे अकबे ते हमला जारी अमरीकी फौजी लगातार पंज कलाक ईरान जे मुख्तलिफ शहरन ते बमबारी सेंटका मौजिब बौशर जापार जासक कनार्क अबू मूसा ए बंदर अब्बास ते हमला किया वया हमलन दौरान ईरान जे दिफाई निज़ाम ड्रोन ए मिज़ाइल ताकन ए बहरीन सलाहियतन खे निशानो बणायो वियो ईरानी फौज जा अमरीकी अड्डन ते जवाबी हमला जिम बहरीन जेल जफीर हवाई अड्डे खे निशानो बणायो वियो उर्दन में बि अमरीकी अड्डन खे निशानो बणायो वियो गडियल अरब इमारतन मौजिब विच ओभर में बिन बहरी जहाजन ते ईरानी हमले जे नतीजे में एक भारतीय शहरी मारजी वियो ऐं अठ ज़ख्मी थिया आहिनि
1: पाकिस्तान पारां सऊदी अरब ते हूसी बागिन जे हमले जी मज़म्मत गडि॒यल क़ौमनि जे सलामती काउंसिल जे इजलास खे ख़िताब कंदे पाकिस्तान जे नुमाईंदे उस्मान जदून चयो त पाकिस्तान यमन जी ख़ुदमुख़्तियारी इतिहाद ऐं सलामती जी हिमायत करे थो ख़िते में वधंदड़ छिकताण जे ख़ात्मे जो वाहिद हल सफ़ारतकारी आहे
0: कनकोट में लोलाई बिरादरी के बिंदुड़ में झेड़ो एक जड़ो मारजी वो जगण थाने जहद में जमीन के मामले तनछेड़े में फायरिंग सबब मुरीद लोलाई मारजी वो है कनकोट पुलिस वाक़े वाले हंध पहुंची लाज जरूरी कार्रवाई का अस्पताल मुंतकिल किया
1: कश्मोर वेझो आर डी 140 वट बी एस फीडर के लगल घारो टे डी गुजरण बावजूद बंद थो केतरा ही गोठ बुडी वया पानी घर में दाखिल फसल पानी हेठ आपाशी इंतजामिया गुम केटीएन न्यूज से गालाइंदे चीफ इंजीनियर गुडू बेराज चवण है त घारो हथ से हयो वो है एफ आई आर दाखिल कराए छी है
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
4: सुनते रहो जीए एफएम 90.8
5: क्या आप जोड़ों के दर्द पट्ठों के खिंचाव कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
6: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश फकीरी एनर्जेसिक क्रीम
5: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
6: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
5: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है
6: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द
5: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ
6: गर्दन और कंधों के दर्द
5: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब
6: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
5: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
6: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम दर्द सोजन वरम फौरी खत्म आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें
3: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है
4: सुनते रहो जी एफ एम 90.8

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की

0: से महके
1: मिले दर्द बहुत कभी तू भी मिल दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल आज फिर आई ना तू इंतजार रहा मुस्तकिल तवील है गम की शाम कहानी मोहब्बत की मुख्तसर नजर

फतह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम। यू आर शोइंग रेडियो FM 88 और साथ साथ प्यार से चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल सूची हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आज रुखसार।

की सालगिरह हम को कहेंगे मैंने मैंने यहाँ पे रन सब दे हैप्पी बर्थडे टू यू, और जो लोग बीमार उनको कहेंगे गेट वेल सून, यू नो लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें। आप इसके अलावा मेरी आवाज जिन जिन गलियों और शबारों शहरों और शराहों वादी और पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगे ले जी आया नुसर बिस्मिल्लाह बॉन्जोर शाओ नी हाओ एंड वेलकम इनटू जिंदगी गुजार है।

0: ही प्यार है।
1: मैं हमेशा की तरह बहुत कुछ सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, बहुत सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं, सब कुछ

करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम का पहला गाना और सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, वापस आएंगे इसी के साथ, स्टे ट्यून्ड।

सालगिरह है उनको कहेंगे मैं मैंने यहाँ पे रहूँ, सो टुडे हैप्पी बर्थडे टू यू, और जो लोग बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें, आमीन. इसके अलावा मेरी आवाज जिन गलियों शुभारों शहरों और शराहों वादी और पहाड़ों गलियाओं में गुजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगे ले जी आयानु सर बिस्मिल्लाह बोंजोर शाउनी हाउ एंड वेलकम इनटू जिंदगी गुजार है. काम में हमेशा की तरह बहुत कुछ सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं सब कुछ करेंगे. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना और सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, वापस आएंगे इसी के साथ स्टे ट्यून्ड.

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: सुबह हो या शाम बस जीए एफएम ऑन करो अपने दिन को ऑसम सुपर हिट वाला।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: बहन, तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: जो शहर बैंजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
1: GFM 90.8

गाना जो कि मैं कर रही हूँ प्ले, इसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे। स्टे ट्यून्ड।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: GFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़।

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: अब आप
4: सर मस्त धरती
5: फातिये मेहरा सिंध की एक और पहचान
6: GAFM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज
2: अपना शहर अपना घर लाड़काना
7: और लाड़काना की आवाज

0: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
1: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
2: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
1: अब दर्द को कहें अलविदा
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
1: जी हाँ,
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ये ऑइंटमेंट
1: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
2: दर्द, सोजिश
1: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
2: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
2: पट्ठों के खिंचाव,
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
2: और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

वैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले जरूर बताया था आपको, और एग्जैक्टली बताया था, बट दोबारा बताऊंगी हिप्स टर्न लाइक के साथ।

जी, और कॉल से पहले जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस जिसको हम इंक्लूड करते जाते हैं, तो हमें मैसेज किया है जी, हैप्पी गर्ल ने हैप्पी गर्ल लिखते हैं, शो सुपर डुपर है, अस्सलाम वालेकुम सीता जी, मैंने आपको शो कल से सुना है, आपका शो सुपर डुपर है और आप उससे भी ऊपर, ओके आप कहती हैं तो मान लेते हैप्पी गर्ल, और मेरी बुआ सीमा आपका शो रोजाना सुनती है, वो आपकी फैन है, अरे वाह क्या बात है, जो मेरे फैंस हैं मैं उनकी फैंस हूँ, ठीक है, और बस सुनी की उसके अलावा और किसी की फैन नहीं हूं मैं, ठीक है, जो मेरे फैंस हैं मैं सिर्फ उन्हीं की फैंस हूं। अच्छा आज का टंग टेस्टर कुछ इस तरीके से होगा कि आप लोग मुझे बताएं कह के दिखाएंगे, किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई सेगमेंट के फर्स्ट कॉलर, हेलो

0: कॉलर लेते हैं और 0300-01134-88 नेक्स्ट कॉलर. हेलो
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: मैं किरण बात कर रही हूँ.
0: किरण बात कर रही हैं
1: जी.
0: कहाँ से?
1: मोरो सिटी से बात कर रहे हैं. करंट
0: पोल. ओहो, मोरो सिटी से बात कर रही हैं. प्रोग्राम सुनती हैं किरण
1: जी? सुन रहे हैं.
0: ओके, जबरदस्त. मुझे ये बताइएगा कि टंग ट्विस्टर सुना है? कितने टाइम से मेरा प्रोग्राम सुन रही हैं?
1: रोजाना सुनते हैं.
0: पहली दफा कॉल लगी है या की ही आज है?
1: नहीं, आज पहली दफा कॉल की है.
0: ये तो बहुत अच्छा हो गया. अच्छा, टंग ट्विस्टर बोलेगी?
1: जी.
0: तो बोले
1: दोबारा.
0: किंजा ने कागज की कश्ती किनारे किनारे खिसकाई. ओके, वेरी नाइस किरण. कुछ और कहना है किरण?
1: बोले.
0: किसका सॉन्ग? तेरी खैर मंगदी. चले, जरूर प्ले करेंगे जी. थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखें अपना.
1: थैंक यू.
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज.

इसी के साथ हम चलेंगे आगे और एक गाना मैं प्ले करूंगी, साथ साथ हम उसे सुनेंगे. लेकिन उससे पहले मेरे सामने एक अदद बहुत खूबसूरत पोइट्री जो कि मुझे नजर आई और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको सुनाई जाए, तो सुना दूं क्या?

की शायरी जो है ये है मुंतजर खैराबादी की. वो कहते हैं कि नहीं शक इसमें जरा भी, ये मिसल सच है कि आता है. किया अपने ही आगे उन्हें देखो कि सताते थे, जलाते थे, रुलाते थे, मेरे दिल को दुखाते थे, कुराते थे महीनों सिफते शम्मा गुलाते थे, जफाओं को बढ़ाते थे, मोहब्बत को घटाते थे, सितम मुझ पे वो ढाते थे, कभी मुंह को छुपाते थे, कभी आंख चुराते थे, ना आते थे ना जाते थे, फकत दूर से बातें ही बनाते थे, नया रोज वो तूफान उठाते थे, मेरे दिल पे बड़ा रोब बिठाते थे. अब ऐसा है कि मैं उनको सताता हूँ, जलाता हूँ, रुलाता हूँ, बहुत दिल को दुखाता हूँ, उड़ाता हूँ महीनों सिफते शम्मा गुलाता हूँ, जफाओं को बढ़ाता हूँ, मोहब्बत को घटाता हूँ, सितम उन पे ये ढाता हूँ, ना आता हूँ ना जाता हूँ, फकत दूर से बातें ही बनाता हूँ, कभी मुंह को छुपाता हूँ, कभी आंख चुराता हूँ, नया रोज में तूफान उठाता हूँ, मैं उस दिल पे बहुत रोब बिठाता हूँ, जो वो हाल दिखाते हैं तो लाखों ही सुनाता हूँ, वफाओं पे नजर है ना मोहब्बत की खबर है, जो इधर हाल था पहले वही अब हाल उधर है, जो ये बदला हुआ आलम है तो इसका ये असर है, वही अब सीनाए सुपर है, जो बना फिरता था कातिल, जो जफाओं में था कामिल, जो किया करता था गमजे, ये अजब रंगी मोहब्बत है कि जो रंज से रोता था वो हंसता है, जो हंसता था वो रोया है. और इसी के साथ Here comes a song by Ali Zafar.

0: तो आवाज भी सिंपली है। GFM 88 नेटवर्क सिंपली आवाज। खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी चमक को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: तमाम ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए थे ठहन चाहे था जिते हो जाए तहफ़ जदीद सहूलतों मंजूर थियल सिक्योरिटी।
2: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
1: सखर शिकारपुर रोड ते
2: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल सामने
1: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थियल
2: एक शानदार आई काबिले एतमाद रिहायशी मंसूबो।
1: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
2: रिहायशी प्लॉट 80, 120, 150 आई 200 गज जा
1: आई कारोबारी मौके लाइक कमर्शियल प्लॉट 50 गज आई 600 गज
2: हिते तमाके मिलन थी जदीद सहूलतों
1: साफ मिठो पानी
2: बिजली गैस
1: चौवी कलाक सिक्योरिटी
2: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल आई सबका वही गाल ही मंसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेजो आहे
1: जेको रिहायश आई सीड़पकारी बिनी लाइ बेहतरीन मौको बनाए थो।
2: अजी पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो
1: फौरी कब्जो आई फौरी रजिस्ट्री।
2: कॉन्टेक्ट
1: 03009317252
2: एंड 03132757860 हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
1: तमाचे महफूज मुस्तकबिल बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो बेहतरीन इंतखाब।
3: यार मैं छा क्या किथे वन्या घर में बैठो आया पर ठीक ही ना शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई ना ही थी
4: जो भला छा छा तुखे साफ साफ बुधा मसलो छाए।
3: यार एक मसलो हुजे त बुधाया मुझे ते मसलन जी कतार लगल है न भूख सही लगे थी जे कुछ भी खावा थो तो हजम ही न थो थे पेट फूक जी वने थो हथ पेर सुन थी वन था सजो डी सुस्ती महसूस थे थी कह कम जो रहंदो ही ना या।
4: यारे तुझा घणा न बस हिक ही मसलो आ
3: हिक इहो की है
4: हां तुझो मैं तो खराब आ छा तो न बुधवा मादो दुरुस्त त इंसान दुरुस्त जे मादो सही न होंदो त भूख भी न लगंदी न हाजमो थिंदो न ताकत मिलंदी
3: त पो मां छा कया
4: सोलो हला है इस्तेमाल कर शिफाए मैदा कोर्स एक कुदरती जुजन मां तैयार कैल कोर्स तुझे जिस्म जो हिस्सो बन जी तुझे मैदे के बिल्कुल ताजो आई मजबूत करे छरींदो भूख खुली वेंदई खादो सुठे नमूने हजम थींदई पेट भूख जण खत्म सुस्ती खत्म जिस्म में ताकत ईंदई।
3: वाह यार वाह जी गाल बुधाई थी पर ही किथे मिलंदो
4: यो मिलंदई बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे सामू अल नूर दवाखाना रोड़ी आई राबते जे लाइ नंबर भी अथई 03055800616 शिफाए मैदा कोर्स मैदो दुरुस्त त इंसान तंदुरुस्त।
5: होम्योपैथिक इलाज बगैर के साइड इफेक्ट जे तजुर्बेकार होम्यो डॉक्टर आजम अली मुगल अवां जे शहर सखर में मैदे जा मसला गैस बदहजमी कब्ज खूनी आई बादी बवासीर जनाना बीमारन समेत बिन मर्जन जो इलाज करे रहयो आहे। रोजाना सुबह 9 बजे खां शाम 5 बजे ताईं जुमो मोकल एड्रेस अली होम्योपैथिक क्लिनिक वेझो होंडा मोटरसाइकिल वर्कशॉप नज़द PSO पेट्रोल पंप रेस कोर्स रोड सखर राप्ती जिले 03112082600 आई 03337143311
6: जीए सखर FM 88
0: सखर की आवाज़।

Oogies, you welcome back once again. ज़िंदगी गुलज़ार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपका और मेरा साथ पूरी पूरी एक बजे तक था. एक बजने में बहुत कम वक्त बाकी रह चुका है और मैं सोच रही हूँ कि मैं एक गाना चेंज कर दूँ और गाना हम प्ले करेंगे नेक्स्ट. एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज एस्प्रेसो. इसी के साथ हम आगे चलेंगे कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ क्योंकि मुझे बहुत सारे रिसीव होते जा रहे हैं आप लोगों के. दिलीप कुमार मेघवाड़ हमें सुन रहे हैं और कहते हैं कि जी शो लाजवाब है आपका. आबिद जान हमें सुन रहे हैं. रेहाना खान भक्कर से हमें सुन रही हैं. वेलकम टू द शो. के वेलकम टू यू एज वेल.

0: ओके जी, कॉल्स भी लेते हैं साथ साथ। नेक्स्ट कॉलर, हेलो।
1: अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: पछताओगे बहुत मेरे दिल को उजाड़ कर। पछताओगे बहुत मेरे दिल को उजाड़ कर। अरे इस दिल में और कौन है, मैं माँ तुम्ही तो अपने अल्लाह बोलो जाग जानी का सलाम है मोहब्बत कबूल।
0: वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
1: ये दिल मेरा था बादशाह गुलाम कैसे हो गया। ये दिल मेरा था बादशाह गुलाम कैसे हो गया, कि धड़कनों में आपका कयाम कैसे हो गया। किताब इश्क जिसमें उम्र भर कभी पढ़ी न थी, नमाज इश्क में वो दिल इमाम कैसे हो गया।
0: वाह वाह वाह।
1: ये चश्म मोतबर थी, ये चश्म मोत

0: मर की जहर आप कैसे आ गई, खलीसी दिल में आप ही का नाम कैसे हो गया।
1: वाह,
0: खुदा तो खुद हसी है, खुदा तो खुद हसी है जो चाहता है हुस्न को, तवाफ हुस्न इश्क में हराम कैसे हो गया। अरे तवाफ हुस्न इश्क में हराम कैसे हो गया। भुला चुके थे दोस्त हम तेरी सभी इनायतें, भुला चुके थे दोस्त हम तेरी सभी इनायतें, फिर आज शाम गम का एहतमाम कैसे हो गया। अल्ताफ बलोच जाग जानी जाते जाते कह रहा है कि उठा ले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस घड़ी जिंदगी की शाम हो जाए, और पंतल पाक से जो मांगो मेरी बेटी तो स्टार वो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि आपका स्टार भी वीरगो है और मेरा स्टार भी वीरगो है, और वीर से शुरू होता है विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री।
1: ओके, वेरी नाइस, और नो डाउट वी फॉर वीरगो एंड

0: संग और इसी के साथ हम सॉन्ग चेंज करेंगे और प्ले करेंगे जी दो नंबर. सो हियर कम्स दो नंबर सॉन्ग और ये हम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, साथ साथ आज के लास्ट लकी कॉलर्स भी लेंगे. आगे लास्ट लकी कॉलर चला हो. वालेकुम अस्सलाम. इतना स्लो क्यों बात कर रहे हैं? फहद
1: फारूक.
0: फारूक, फारूक कैसे? ठीक ठाक
1: अल्हम्दुलिल्लाह.
0: कॉल नहीं लगती, बस क्या करें, बिजी होता है ना नंबर, बिजी शो है, मतलब शो इतना अच्छा होता है कि लाइन बिजी होती है. तो आप दोबारा ट्राई किया करें, जल्दी जल्दी मिलाया करें ताकि आपकी कॉल लग जाया करे.
1: तकरीबन 100 दफा कॉल लग गई है.
0: 100 दफा कॉल लग गई है?
1: नहीं लगाई है तो नहीं लगा नंबर अभी, लास्ट दफा मैंने कभी लगाया.
0: चले लास्ट लकी कॉलर है आज के फारूक. आप हमें ये बताइए आज की अच्छी बात क्या है?
1: अच्छी बात कौन सी बताऊं? कोई आप बताए.
0: मैं तो बताती ही हूँ लेकिन आपसे पूछनी है ना, जो लिसनर्स आएंगे लास्ट में उनसे पूछनी है, ये शो का रूल है.
1: अच्छा अच्छा.
0: यस, कोई भी अच्छी बात जो जहन में रैंडम अचानक से आ रही हो इस वक्त मौजूद हो.
1: नहीं अभी तो नहीं, कोई
0: नहीं आ रही. अच्छा, कोई बुरी बात आ रही है जहन में?
1: नहीं नहीं, अभी ड्यूटी में बैठा हूँ रेगुलर
0: शो सुनते हैं. ओके चले, इसी तरह सुनते रहे, इंजॉय करते रहे, इंशाल्लाह आपके जहन में फिर अच्छी बातें जरूर आया करेंगी.
1: पाकिस्तान आर्मी के नाम कोना चला.
0: ओके, पाकिस्तान आर्मी के लिए सॉन्ग चलाते हैं. ओके,
1: आपका शो तकरीबन फौजी सुनते हैं और मैं भी अभी आपका शो सुन रहा हूँ.
0: चले इसी बात पे हमारे फौजी भाइयों के लिए हम एक गाना प्ले करते हैं लास्ट में, ठीक है?
1: ठीक है.
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.

ओके और इसी के साथ फाइनली मेरे जाने का वक्त हुआ जाता है. SRH आपका मैसेज आया है, कॉल अटेंड नहीं कर रहे हो आप, तो फिर हम सेगमेंट के विनर कैसे बनेंगे? ओके, बहुत सारे लोगों की लगी होगी, बहुत सारे लोगों की नहीं लग पाई होगी. खैर कोई बात नहीं, कल करेंगे ना शो, तो कल कर लेंगे, ठीक है. और लास्ट में जैसे कि लास्ट कॉलर ने कहा कि हमारी पाक आर्मी के लिए, पाक आर्मी के जवानों के लिए कोई अच्छा सा सॉन्ग चला दें, तो बिल्कुल प्ले कर चुकी हूँ. और इसी के साथ फाइनली लेंगे आपसे इजाजत, इंशाल्लाह मेरी आपसे चर्चा होगी कल. On same time, same channel, same show with the same RJ. So na mat bhuliyega. Zindagi gulzar hai, apna bahut sara khayal rakhiyega. This is me, RJ Rukhsar. Signs out. Take care. Goodbye. Ba amani khuda. Allah hafiz.

0: सचल की सरमस्त धरती
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: वधी के चार दहशतगर्द जहनम भेड़ा ऑपरेशन दौरान मारजी वेल दहशतगर्द जवांगु वधी 200 121 थी वो। सिक्योरिटी जरियन मौजूद बलूचिस्तान में पाक फौज FC ए पुलिस जो गडियल ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन दौरान वधी के चार दहशतगर्द मारजी वया है। ऑपरेशन शोबान में मारजी वेल दहशतगर्दन जो अंग वधी 83 थी वो। गडियल ऑपरेशन दौरान मारजी वेल दहशतगर्दन जो अंग वधी 121 थी वो है।
4: अमरीका ईरान में पियाबना हुरमस का शुरू थियल चिकताड़ खत्म न थे। बिन्हीं मुल्कन जे हिकवे ते हमला जारी। अमरीकी फौज लगातार 5 कलाक ईरान के मुख्तलिफ शहरन ते बमबारी। सेंटकॉम मूजिब बौशर जापार जासिक कनार अबू मूसा ए बंदरबास ते हमला किया वया। हमलन दौरान ईरान के दिफाई निज़ाम ए ड्रोन ए मिज़ाइल थाकन के ए बहरी सलाहियतन के निशानो बणाया वो। ईरानी फौज जो अब अमरीकी अडन ते जवाबी हमला बहरीन जल जफीन हवाई अड्डे के निशानो बणाया वो। उर्दन में भी अमरीकी अडन के निशानो बणाया वो। गडल अरब इमारतन मूजिब विच ओभर में बिन बहरी जहाजन के ईरानी हमले के नतीजे में एक भारतीय शहरी मारज वो 8 जख्मी थे।
3: कराची में फुर मज़ाहमत कतल थे डॉक्टर आकाश केस जा जवाबदार जाम शोरे मां गिरफ्तार। पुलिस सागर रामचंद के गिरफ्तार करे जांच शुरू करे छी। मकतूल आकाश के मड़ जो आखिरी रस्मू जारी। वारसन है आकाश के आखिरी रस्मन बाद केस दाखिल करायो वेंदो।
4: बेगमबाद पुलिस हथां गिरफ़्तार थियल मैंने एजाज जखरानी जो नंढो भाउ आज़ाद जखरानी कराची मुंतकिल। लगुणे मैंने मरूम बाबल खान जखरानी के नंढे पुट मीर आज़ाद खान जखरानी के जगमबाद पुलिस सख्त सिक्योरिटी में कराची के दरख्शा थाने से मुंतकिल कर। MNA मीर एजाज हुसैन जखरानी के नंढे पुट मीर जेर खान जखरानी की वफात बाद एजाज हुसैन जखरानी सस नंढे भाउ मीर आज़ाद खान जखरानी में इख़्तिलाफ़ पैदा थे हुआ।
3: कोट में लोलाई बिरादरी के बिन धुरी में संगावती तकरार तां झेड़ो। एक जनो कतल गोठ फौजू लोलाई में संगावती तकरार तां धुरी में झेड़ो थियो। फायरिंग के नतीजे में मुरीद लोलाई मारजी वयो। एक जनो जख्मी थियो। राधन भरसा प्लाट के तकरार तां घर बाहरा सुतल गोठानो कतल। तालिब कलोड़ो के कुआड़िन जा वार करे कतल कयो वयो। खैरपुर नाथन शाह के गोठ आढ़ो खान गाराई में हथियार बंदन हथा नौजवान मोहम्मद बलोच कतल। कारण मालूम न थियो। शक बुनियाद से एक जनो गिरफ्तार।
4: सिंध में ज़रई पानी की खोट बरकरार। मुख्तलिफ़ शहर में मुजाहरा ऐं धरणा। कनकोट में कौमी अवामी तहरीक पारां मुराद वाह में पानी खोट खिलाफ़ डीसी आफ़ीस वारो धरणो। टंडो गुलाम अली भरसां बि पानी खोट खिलाफ़ आबादगार में धरणो। मुराद वाह जे पुछड़ ताईं पाणी न पहुचण जो मुतालबो कयो। ख़बर में पई इमाम वाह जा जागीर वाह में पाणी शदीद खोट खिलाफ़ आबादगारनि कराची बदीन रोड ते धरणो खयो। खैबर वेझो गोठ पुनो हिंगोरो जे रवासनि सुई कुंदर शाख में पाणी खोट खिलाफ़ एहतजाज। शाख में पाणी छॾण जो मुतालबो।
3: कश्मोर वेझो RD 140 वटि BS फीडर के लगल घारो 3 ॾींहं गुज़रण बावजूद बंदि न थियो। केतिरा ई ॻोठ पुॼी विया। पाणी घरनि में दाख़िल। फसल पाणी हेठि आबाशी इंतिज़ामिया गुम। KTN न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चीफ इंजीनियर गुडू बेराज जो चवणु आहे त घारो हथ सां हयो वियो आहे। FIR दाख़िल कराए छॾी आहे।
4: हफ़्तो वक़्तु कराची भरिसां समुंड में किरी तबाह थियल कार्गो जहाज़ जी मिछाणी वासी को पायलट गायबाना जनाद नवाज़दा। वो ठोड़ा शरीफ में को पायलट फैसल महमूद जतोई जी गायबाना जनाद नवाज़दा कई वही। को पायलट जनाद में इलाइक़े वासन सियासत समाजी पाण शिरकत कई। शायद पायलट जे वालिद रिटायर्ड कैप्टन नाज़ुमद्दीन जतोई हादसे जी जांच करण जो मुतालबो करे चयो आहे त मुस्तक़बिल में अहिड़नि हादसनि खां बचण लाइ शफ़ाफ़ जांच ज़रूरी आहे।
3: सिटी भरसां तेज रफ़्तार ट्रालर जे टकर में पोरेत फोत। ट्रालर ड्राइवर फरार। फोती पोरेत जी सुञाणप इक़बाल कलोड़ जे नाले सां कई वई।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
6: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
6: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
6: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
6: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
7: अजरक के रंगों से रंगी,
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
7: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
5: GFM 88 नेटवर्क।

0: अहिड़ी दवा जेका सूर खां ॾे निजात, सूर चाहे जोड़नि जो हुजे, पठनि जो हुजे, जेल जो हुजे या घिटिया जो, कुन रग जो हुजे या वरी जिस्म जे कंहिं बि नंढे वॾे सूर जे लाइ आज़मूदा दवा आहे। सतनि ॾींहनि जी दवा सिर्फ़ 450 रुपयनि में। ख़ात्माए दर्द मिलण जो हंधु बेड़ी चौक नादरा ऑफिस जे साम्हूं अल नूर दवा खाना रोहड़ी। राब्ते जे लाइ 0305-5600-616। खुशखबरी, आपके शहर सखर में 43 साल तजुर्बे कार
1: होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान,
0: DHMS सिंध,
1: RHMP इस्लामाबाद,
0: सीनियर प्रोफेसर होम्योपैथिक कॉलेज लाड़काना,
1: माहिर अमराज गुर्दे और मसाने की पथरी,
0: बवासीर का बगैर ऑपरेशन इलाज,
1: कमर दर्द,
0: अर्कुन निसा,
1: जोड़ों का दर्द,
0: हेपेटाइटिस,
1: वजन की कमी या ज्यादती,
0: बेऔलादी,
1: गंजपन का मुकम्मल इलाज
0: और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर होम्यो डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान।
1: टाइम
0: हफ्ते से जुमेरात
1: सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
0: आगा होम्योपैथिक क्लिनिक,
1: पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर।
0: राब्ते के लिए
1: 0326-22-00-440।
2: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
3: फादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
2: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज़।

0: है इज ब्रॉट टू यू बाय व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: आप सुन रहे हैं वाई टी शिंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है वाई टी ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के टावन से आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे और सुन आप अपने होने का एहसास दिलाते जाएंगे। अगर आप हमारे साथ मौजूद है तो जाहिर सी बात है शामिल प्रोग्राम होकर आप हमारे प्रोग्राम की रौनकों को बढ़ाएंगे ना। इसी के साथ साथ बताएंगे की क्या तरीकेकार है हमारे प्रोग्राम कैसे बनने में। लेकिन यहाँ पर जो है ना आप लोगों से आज के प्रोग्राम का जो सवाल पूछा जाएगा तो वो क्या होने वाला है वो जरा जान लेते हैं। ओके जी, तो आज मेरा आप लोगों से सवाल जो होने वाला है वो थोड़ा सा ऐसा कह लेते हैं कि नॉर्मल सा हो सकता है, क्योंकि कुछ बातें हमें जिंदगी में जाननी चाहिए और कुछ बातें अगर हम जाना चाहते हैं और उन्हें जान नहीं पाते हैं तो हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, अपनी जिंदगी में कंफ्यूज ही रहते हैं। तो आज आप जो हैं मैं आप लोगों से जो सवाल पूछूंगी उसका जवाब मुझे बताएंगे। तो सवाल कुछ इस तरह होने वाला है कि आप मुझे बताएंगे क्या हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। अक्सर इस बात के ऊपर जो है ना वो थोड़ी सी बात जो है वो बढ़ सकती है। कुछ लोगों का ये मानना होता है कि हाँ मिलना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि मैंने ये भी देखा है, हमने ज्यादातर लोगों ने ये भी देखा होगा अपनी जिंदगी में कि अगर आप किसी को एक और मौका देते अपनी जिंदगी में तो वो उससे भी बहुत बड़ा कांड आपकी जिंदगी में कर जाता है जितना उसने पहले किया हुआ था। समझ रहे? तो मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि आप मुझे बताएं कि क्या हर इंसान को एक और दूसरा मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बड़ी बड़ी टॉर्चों के साथ जरा रोशनी डालिए इस टॉपिक के ऊपर और बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं और शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब। आइए वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम वाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिलती है जिससे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट करें और शेयर जरूर कर दिया करें। अच्छा हाँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पोस्ट को लाइक भी नहीं करते, तो लाइक कर दिया करें भाई, कंजूसी यहाँ पर अच्छी नहीं लगती, वैसे भी मुफ्त में हो जाता है। पोस्ट को लाइक भी करें और कमेंट भी करें और शेयर भी करें। ओके जी, इसके साथ साथ वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी खूबसूरती के लिए जाहिर सी बात है। तो अगर आप भी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं तो बेशक लगाइए जी, क्योंकि वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है। जैसे कि आप लोगों को नाइट क्रीम मिल रही है, फेयरनेस क्रीम मिल रही है, एक्ने फार्मूला मिल रहा है, सोप मिल रहा है, फेस वॉश मिल रहा है, उसके अलावा लोशन मिल रहा है, हैंड रिमूवल मिल रहे हैं और उसके अलावा जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को जी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है एंड जी स्किन फेस वॉश मिल रहा है। इतने सारे मजे मजे के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो जानेंगे कि आए हाय क्या बात, मजे के प्रोडक्ट्स हैं। तो लगाइए और अपनी खूबसूरती को जरा बढ़ाते जाइए और ऐसा चाहते हैं कि भाई हमारी करीबी जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल होनी चाहिए। तो आप ही डाल करना है 03-15-79-5-95-95। तो मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि क्या हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए, आप क्या कहते हैं इस बात के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ आदिल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? तेरी कुर्बत भी नहीं हुई मयसर और दिन भी बारिशों के आ गए हैं। ओके, आमिर अली हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, हाय मासूमा, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। ओके जी, खुशामदीद। सभी खालिद आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, बेटा कैसी हो, फाइन? यस, यदि आज टॉपिक क्या सोच कर आई हैं आप, मैंने बता दिया, बताएं जरा आप टॉपिक के ऊपर क्या कहेंगे। वासु भाई मौजूद है, हेलो वासु भाई, कैसे हैं? अली अकबर ब्रोही हमारे साथ ही सेकंड से हमारा शो सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? प्रोग्राम की क्या तारीफ करें, अच्छी आवाज़ के साथ साथ प्रोग्राम गुड है और सॉन्ग की रिक्वेस्ट है फोजिया सुमरो सुनाइएगा। ओके, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगी। अभी सफा सोलंकी हमारे साथ ही, सरफराज अली भी हमारे साथ हैं, दोनों को वेलकम करते हैं। और हैं जी गुलाम फरीद बलोच, वालेकुम अस्सलाम, गुलाम फरीद जागीरानी संगी से क्या हाल है, तबीयत ठीक है? और सारे लोग ठीक है जनाब, कोई सॉन्ग तो सुना दीजिए। ओके जी, कोई नहीं, बहुत ज़्यादा वाले सॉन्ग्स आपको सुनाएंगे, बस आप थोड़ा सब्र कीजिए। चाचा खालिद कहते हैं सॉन्ग रिक्वेस्ट प्लीज नोट, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। चलें जी, लगाएंगे सबके गाने। दो दाली हमारे साथ हैं, गुलाम फरीद बलोच भी हैं और आमिर कहते हैं मासूमा ये पोइट्री है, बदलता वो है जिसने सिर्फ सूरज से मोहब्बत की है, जो रूह को, जो रूह का कैदी हो वो रिहाई नहीं मांगता। क्या बात है, और फहीम शेख हमारे साथ जी मौजूद हैं प्रोग्राम में. वालेकुम अस्सलाम इन मौला अलैहिस्सलाम अदर और योगी बाबा ही. अस्सलाम वालेकुम डूड. वालेकुम अस्सलाम जोड़ी. जो मैं सोच रही हूँ वही हैं आप. अब्दुल सतार हमारे साथ हैं जी. गुड मॉर्निंग. और नखा अलावा फहीम कहते हैं भाओ की आयो सफा चाक आयो सफा चाक कलम स्लेट ताम उदाय की आयो. और मोहम्मद अली खोसो हमारे साथ हैं. वालेकुम अस्सलाम. और नखा अलावा फहीम कहते हैं गाना बुधराए जो सब भी नहीं अच्छा सा गाने जी लगी वही. हाँ ये जो पोस्ट की लाइक शेयर करो तब चले. मैं कोशिश करूंगी गाने लगा देंगे आप लोगों के. सरफराज अली सोलंकी हमारे साथ ही जी. थैंक यू जी. थैंक यू. और जानी इब्राहिम भाई हमारे साथ के माशाल्लाह शो. थैंक यू. और हैं जी हमारे साथ अमानुल्लाह शेख. वालेकुम अस्सलाम. कहते मैं बहुत दिनों के बाद आपके प्रोग्राम में शामिल हो रहा हूँ. आप कैसे हैं आप हमारे गाँव में. अच्छा कहते हैं अब हमारे गाँव में चावल की खेत का काम शुरू हो चुका है. यानी कि मुझे लग रहा है अब आप थोड़ा फ्री होंगे इस वजह से आप हमारे प्रोग्राम में आना स्टार्ट कर देंगे. बहुत शुक्रिया जी. आइएगा बिस्मिल्लाह. और आमिर कहते हैं मैंने आपका नाम रखा है. मासूमा नाराज़ तो नहीं है ना आप जो नाम रखा है आपका. नहीं बस सही है. और मोहम्मद जमान हमारे साथ ही. गुड आफ्टरनून भाईजान. खुशा मदीन कहते हैं आपको भी. ऐसे ही आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए. और ज़रा बताइए आप कौन कौन कहाँ कहाँ से हमारे साथ मौजूद है. और टॉपिक के ऊपर आपका क्या कहना है कि एक इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए या फिर नहीं. और इसके साथ साथ यहाँ पर टाइम हो जाता है. ज़रा हम हमारे साथ मौजूद रहना है. सुनती रहिए और साथ दीजिए. मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. YTH एंड जी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय YTH ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए.
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खिबसे की बनी है आवाज.
1: जीए एफएम 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज.
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन 5H Beauty Cream.

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: GAFM 88 Network, सिंध की आवाज।
1: ओके जी, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जनाब GAFM 88 Network। मौजूद है हमारी सास सखर मोरो मेरपुर खास मटियारी सकरन मीरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब, सो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी खूबसूरती बढ़ती रहे और आप शाइन करते रहे, ग्लो मिलता रहे और खूबसूरती हमेशा बरकरार रहे। तो जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जितनी भी समाते हैं, सबको वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और

तो अच्छा हतूंगा, बेहद वाला शुक्रिया। ओके सो यहाँ पर प्रोग्राम में मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया है। आप मुझे बता रहे हैं, बताइए जल्दी जल्दी, क्या एक इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए? इस बात के ऊपर थोड़ा सा जो है ना वो माहौल ऐसा बन सकता है कि लोग इसके ऊपर बात कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आपकी क्या राय है कि जनाब एक इंसान को क्या दूसरा मौका देना चाहिए या फिर नहीं। और जी आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोगों के प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं, प्यारे प्यारे फीडबैक्स हैं। पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए ताकि पता चले कि आप पोस्ट से जो है ना वो वाकई मोहब्बत करते हैं, ताकि जितनी भी पोस्ट आप लाइक और शेयर करेंगे उतना ज्यादा लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और लोगों को पता चलेगा कि मार्केट में व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो जल्दी जल्दी से व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप क्यों इस्तेमाल करेंगे, तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हर तरह का आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उसी के साथ साथ अगर आप ये सोच रहे हैं कि व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम अगर हम लगाएंगे तो हमें फायदा क्या मिलने वाला है, तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम अगर आप लगाना चाहते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम को लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जनाब इस क्रीम को लगाने के बाद आपकी खूबसूरती जो है ना वो हमेशा मेंटेन रहती है। अगर देखा जाए तो आप लोग गोरेपन के चक्कर में अपने चेहरे का ना मतलब थोड़ा हशर नशर कर चुके हैं, तो गोरापन बिल्कुल आपको मिलेगा, लेकिन गोरापन तो मिलेगा लेकिन साथ साथ आप लोगों के चेहरे के प्रॉब्लम्स भी दूर होते रहेंगे। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जिसके अंदर एवोकाडो मौजूद है, एलोवेरा है, मिल्क है, और ये सब चीजें मिलकर आप लोगों की हुस्न को बढ़ाएंगे और आप लोगों को एक अच्छा सा ग्लो देंगे। तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो कि नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करने वाले हैं, और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम्स अगर आप दूर करना चाहते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के साथ आपको व्हाइट एश ब्यूटी सोप भी मिल रहा है, और व्हाइट एश ब्यूटी सोप के अंदर भी भाई एवोकाडो, एलोवेरा और मिल्क मौजूद है। इसी के साथ साथ अगर आप सोप नहीं लगाते हैं, फेस वॉश लगाने वाले इंसान हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी क्योंकि व्हाइट एश का विटामिन सी का फेस वॉश भी मौजूद है। तो व्हाइट एश का फेस वॉश भी है जो कि क्रीमी फेस वॉश है, आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है एंटी एजिंग के लिए। तो व्हाइट एश का फेस वॉश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप अपनी स्किन को लेकर थोड़ा सा परेशान है, आप टीनेजर हैं या फिर आपकी एज चाहे कितनी हो, लेकिन ये एक्नी जो है आपका पीछा नहीं छोड़ते, एक्नी आपका जो है वो जीना हराम कर चुके हैं, तो आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूद है। ओके जी, सो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा वाले फायदे मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात की अगर आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लगाएंगे तो आप लोगों के सिर्फ एक्नी खत्म नहीं होते बल्कि आपके चेहरे पर कोई भी चोट का निशान है, जलने का निशान है, कोई भी कितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि भाई देखा जाए तो आपके चेहरे पर निशानात काफी ज्यादा आ चुके होते हैं, रिंकल्स बढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा ऐसे चेहरे पर निशानात जमा हो चुके हैं, तो जी वो भी खत्म हो जाएंगे जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद लगाने के तरीकेकार भी आपको बताते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर व्हाइट एश लवली क्रीम का नाम ना लें तो कैसे हो सकता है? तो व्हाइट एश लवली क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एश लवली क्रीम जो है ये जनाब इतना कमाल का प्रोडक्ट है ना कि मैं क्या बताऊँ, ये फेयरनेस क्रीम है। और मेरा अगर आप कहा माने तो अगर आप व्हाइट एश लवली क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ घर का हर एक फर्द जो है ना वो व्हाइट एश लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकता है, ये इतना काम का इतना मजे का प्रोडक्ट है। तो व्हाइट एश लवली क्रीम जो कि विटामिंस का जो है ना वो अल्ट्रा विटामिंस का फार्मूला है जिसके अंदर 30 विटामिंस के कैप्सूल्स मौजूद हैं जो कि आपकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे, आपकी खूबसूरती को एनहेंस करेंगे और आपकी खूबसूरती में जो ना चार चांद लगा देंगे। तो व्हाइट एश लवली क्रीम अगर आप मेकअप से बचना चाहते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, रेगुलर अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको व्हाइट एश लवली क्रीम लगाने की बहुत जरूरत है, आप लाजमी व्हाइट एश लवली क्रीम लगाइएगा। और मजे की बात भी बताऊं तो व्हाइट एश लवली क्रीम के अंदर आपको सनस्क्रीन जो है ना वो भी मिल रही है, ऐसा नहीं कि अब आपको अलग से कोई सनब्लॉक लगाने की जरूरत होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप व्हाइट एश लवली क्रीम लगाएंगे तो बस काफी होगा, इनफ होगा, और आपकी खूबसूरती जो है वो बस बढ़ती रहेगी और आप लोगों की खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहेगी, क्योंकि आपका जो जब आप व्हाइट एश लवली क्रीम लगाते हैं और आपके चेहरे पर जो सूरज के खतरनाक असरात आते हैं तो उनसे भी आपको व्हाइट एश लवली क्रीम बचाने वाली, क्योंकि इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है। तो लड़के, लड़कियां, बच्चे, बूढ़े, अंकल, अंटियां सब ही व्हाइट एश लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस्तेमाल कीजिए और जनाब अपनी खूबसूरती को बढ़ाते रहिए। और लगाने के तरीकेकार बिल्कुल जी, आप व्हाइट एश लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है तो इसे आप अपना फेस वॉश करके फिर इस्तेमाल करेंगे, सुबह को हो, दोपहर को, रात को, जब दिल करे। बाकी डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है, इसे आप सुबह को भी लगाएंगे और रात को भी लगाएंगे, दो मरतबा लगाइएगा, ठीक है?
लेकिन लगाने से पहले अपना फेस वॉश कीजिएगा। बाकी बात है व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम की, तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है, तो इसे आप रात के टाइम लगाएगा। सोने से पहले अपना फेस वॉश कीजिए अच्छे से, उसके बाद व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम अप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल सही फार्मूले अगर आप ट्राई करेंगे, यही तरीके कार अगर आप ट्राई करेंगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से भी अच्छे वाले रिजल्ट मिलते रहेंगे। तो बिल्कुल सही, अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो डायल कीजिए 03-15-799-0595-7-1579-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-9-5-
कराते रहिए, खूबसूरती को वेलकम कीजिए क्योंकि आप ये डिजर्व करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस है। निदली कहती है अस्सलाम वालेकुम स्वीट आशे, वेलकम टू शो, तबीयत कैसी, उम्मीदें ठीक ठाक होंगी, मैं भी साथ साथ हूँ, ओके, जानो को वेलकम कहते हैं। मोहम्मद अली खोसो हमारे साथ है, मोहम्मद अली खोसो भाई आपको वेलकम एंड खुश आमदी। अयूब भट्टी भी आपके साथ मौजूद है, वेलकम हो गया जी। योगी बाबा कहते हैं कैसी हो, उम्मीद ठीक ठाक होंगी, हम तो बढ़िया है अल्लाह के करम से, शुक्र पा का माशाल्लाह जी माशाल्लाह। योगी बाबा आपको वेलकम कहा जाता है। यदि आज से शो में हम भी शामिल होंगे, कोई इशू तो नहीं? नहीं नहीं भाई, मुझे तो अच्छा लगा कि आप वापस आ चुके हैं प्रोग्राम में। और इसी के साथ साथ आदिल कहते हैं आज ये लास्ट में गाना लगाइएगा। ओके, मैं कोशिश करूंगी जी, लास्ट में गाने लगाएंगे, जितने भी सैडी हो आप ऐसा कीजिएगा, लास्ट में जरा मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा जितने भी गाने आपने सैडी वाले बोले। ओके जी, इसी बात पर पोस्ट को लाइक और शेयर भी करते रहिए। और गाने मेरी लिस्ट में है तो जरा हम साथ साथ गाने भी सुनते रहेंगे ना, गाने का भी मजा लेते हैं ताकि चस आ जाए भाई। अच्छे अच्छे गाने जो मैंने लिस्ट में लगाए हैं तो सुनने तो बनते हैं। और निधि भी कहती है हाई भैया वास्तव नैया, गर्मी कम हो गई है आज कल, या ये सच है? थोड़ा थोड़ा फर्क है मुझे लग रहा है शायद ज्यादा नहीं पता।

Vitation Z's Can Beauty Show. चाचा खालिद कहते एक तो और मौका मिलना चाहिए टॉपिक है ना करिए चाचा ना करिए साथ मना कयो हा

0: क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना सुन रहे हो। साथ साथ ये हमारे साथी जी मोहम्मद अली खोसो के थे। प्रोग्राम जबरदस्त खूबसूरत से चल रहा है। अयूब और प्रोग्राम को सुन रहा है, बाबल खोसो प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। डिवाइड कर दिया आपने सब लोगों को। भक्त अली सियाल हमारे साथ मौजूद है जनाब, वेलकम करते हैं। डूडी कहते हैं सॉन्ग सुनाइएगा। डूडी बिल्कुल आपको गाना सुनाते हैं। वफा अब्दुल वहीद जतोई हमारे साथ हैं। फहीम कहते हैं टॉपिक मिलना चाहिए, सब एक जैसे नहीं होते। अच्छा ओके जी, ये हमारे साथ हैं। आदिल लिखते हैं नहीं, हर इंसान को अंधाधुंध दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। बात मौके की नौयत पर है, दूसरा मौका जरूर दो जब गलती अनजाने में हो गई हो, जब सामने वाला दिल से माफी मांगे और अपनी गलती माने, जब वो बदलने के लिए अमल से साबित करे, सिर्फ बातों से नहीं। ऐसे लोग रिश्तों की कदर करते हैं। और दूसरा मौका मत दो जब कोई जान पूछ कर धोखा दे, इज्जत तोड़े या तकलीफ दे, जब वही गलती बार बार करे और माफी को कमजोरी समझे। जो जब आपको दूसरा मौका देने के बाद भी सुकून की बजाय डर लगे, तो वहाँ हद लगाना खुद से वफादारी है। और कहते हैं दूसरा मौका देना अच्छी बात है, पर अपनी इज्जत और सुकून बेच कर नहीं। माफ करो पर वही जख्म हर बार खाने के लिए हाथ आगे मत करो। कितनी अच्छी आपने देखो बात कर दी। अच्छा साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथी, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं जी मिलना चाहिए। DIG ऑफिस लाड़काना से आप हमारे साथ हैं। माय फ्रेंड है अल्लाह बख्श और हसीब, रिहान, आसिफ, रजीब, मोहसिन फ्रॉम मिठो देरो, शो वेरी नाइस, थैंक यू जी, वेलकम करते हैं आप सब भाइयों को। और निधि कहती हैं किस चीज का मौका, यानी कि एक इंसान आपके साथ बुरा करे और फिर आए आपकी जिंदगी में और बोले कि मुझे माफ कर दो, आइंदा नहीं होगा ऐसा, तो उसे दूसरा मौका देना चाहिए या फिर नहीं? सिंपल सी बात पूछी है। ओके जी, आप साथ साथ ये भी बताते रहे कि YJH प्यूरी प्रोडक्ट्स का कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आप लोगों को अट्रैक्ट कर चुका है अपनी जानिब और आप इस्तेमाल करने लगना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि ऐसे है ना कि बहुत से लोग पहले जानते हैं, समझते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल आप ऐसा ही बने। आप पहले चीजों को जो है ना वो समझने की कोशिश किया करें, उसके बाद आप जो है ना वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया करें। खास तौर पर जब आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो, तो सेंसिटिव स्किन के ऊपर आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पर जो ना थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। तो अगर आप भी YJH प्यूरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जनाब YJH ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑल स्किन टाइप के लिए, तो YJH ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कीजिए। सारे लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मजे की बात है कि हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हर तरह का प्रोडक्ट आपको जब मिल रहा है तो फायदा उठाइए उससे और जी इस्तेमाल कीजिए YJH ब्यूटी प्रोडक्ट। क्या बात है, क्या बात है भाई, बड़ा खुश है। और डूडी कहते हैं इंसान के बियो मौको बिल्कुल भी न मिलजे, थियो सो थियो हाणे वनी बकरियूं चाराए। असां बरुचन में एक पहाको आहे, कम निकतो रखण विसरियो, तां में ना असां में भी आए, सभिनी में आए। सो तव्हां चओ वैसे सही था।
1: अच्छा फहीम कहते हैं भाऊ अच्छा सा गाना चवंदा आयूं, अच्छा सा गानो चवंदा आयूं, आखिर में हलंदो आहे, थोड़ी देर कंदासीं त लिस्ट फुल थी वेंदी, वो असां काॾे वञूं।

तो सही है। तेरी ही कमी भाई हमारे साथ ही प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। वहीद वफाई हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम सुब्रा जी, क्या हाल चाल है आपके? प्रोग्राम माशाल्लाह बेहतरीन होते हैं, फ्रॉम जकमाबाद से आप हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू। हाफिज यूनिस बाबर हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम।

योगी बाबा, बायोमेट्रिक की तो जरूरत होती है ना, चाहे हम कितना ही क्यों ना पढ़ लें, समझ रहे हो? अंगूठो बाबा जरूरी है, जरूरी। आमिर कहते टॉपिक में, सुमा इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए ताकि वो और ज्यादा हमारे दिल दुखाए, इसलिए हाँ। अच्छा ये फहीम कहते हैं, खूब समझते हो तुम भी मेरी अदाओं को फहीम, कि मेरी उठती निगाह को बगावत समझ लिया। अरे मैं तो तुझसे हाथ मिलाने को आया था और तूने उसे भी खंजर समझ लिया। वाह वाह नाइस बक्तली सियाल, माँ ठीक ताबुदा किया। अच्छा मामा सलमान कहते टॉपिक, हालात पर मुनसर है हर शख्स को दूसरा मौका देना जरूरी भी नहीं और हर बार इनकार करना भी दुरुस्त नहीं। आमतौर पर हर दूसरा मौका तब दिया जा सकता है जब वो अपनी गलती तस्लीम करे, उसी अपने किए पर हकीकी पछताव हो और वो अपने रवैये में वाज तब्दीली दिखाए और उसकी गलती से आपकी चलें जी। बात कुल मिलाकर आपने सही कर दी है और बहुत शुक्रिया, इसके ऊपर जरा हम अमल करेंगे। सदाम अनी सदर दीन बोजदार हमारे साथ हैं, कहते हैं ओके ओके जी ओके। और वफा सदाम हमारे साथ हैं, आपको भी खुश आमदीद। एक लाख बलोच कहते हैं हाय सिद्रा नाइस जो आंसर, हाँ मौका मिलना चाहिए, शायद सुधर जाए। ना सुधरा तो कौन जिम्मेदार। अच्छा गुलाम फरीद बलोच हमारे साथ हैं, कैसे हैं जी आप, ठीक ठाक हैं? और बताएं जरा व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट लगा रहे हैं या फिर नहीं? फहीम कहते हैं व्हाइट एज लवली क्रीम बेस्ट है, व्हाइट एज लवली क्रीम बाबा गाल तमाम बिल्कुल सही कही है। व्हाइट एज लवली क्रीम जे के मानू हनन पया उन जला बेस्ट ही आए छो, तो तमाम जी जिंदगी आसान बनजी वेंदी है। व्हाइट एज लवली क्रीम जे अंदर जेको आना सब चीजों आए, जैसे कि तमाम के सन ब्लॉक भी मिली वेंदो, न जे अंदर तमाम के विटामिन जी कमी अगर तमाम जी इसके में मौजूद है तो वह भी पूरी थी वेंदी। आई तमाम जी मेकअप जी अगर या आदत आए, यानी कि खास करके खवातीन जी के होंदी आए, कोई जॉब करनी आए तो मेकअप की जरूरत पड़ी है, तो उहा जेका मेकअप की नीड होंगी खास कर गर्मियों में, तो तमाम मेकअप लगाईंदा तो तमाम की स्किन तमाम घनी खराब थी वेंदी है। सो मेकअप का थोड़ा जरा साइड अचो, व्हाइट एज लवली क्रीम जो इस्तेमाल करो, तमाम चुटकिन में रेडी थी वेंदा, तमाम स्किन के ग्लो भी अची वेंदो, तमाम खूबसूरती भी तमाम मिली वेंदी, तमाम शाइन कंदा रहंदा। सो व्हाइट एज लवली क्रीम एक यानी कि मुझे तो यो चवण है, हर एक इंसान की जिंदगी में होजन जरूरी है। व्हाइट एज लवली क्रीम ढी कम की शय अव, सो इनके तमाम लाजमी सब मानो इस्तेमाल कर, ठीक है? हाँ कोई एज लिमिट भी ना है, बार जवान कुराड़ा हर को।

ओके आबिद बिरोई हमारे साथ हैं. हेलो, कहते इट्स सो गुड शो, थैंक यू. और चाचा खालिद कहते हैं कि वैसे हजरत आदम को अल्लाह पाक ने दूसरा मौका नहीं दिया और जन्नत से निकाल दिया, जो टॉपिक आंसर. क्या पता. लेकिन माफ तो कर दिया था ना. और उसके अलावा चले इसके ऊपर वैसे बहुत लंबी सी बात हो सकती है, टाइम हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड है, तो मैं चाहती हूँ कि आपके जल्दी जल्दी कमेंट रीड कर लेते हैं. सरफराज क्या कहते हैं, बाजी हमारे लिए अब्दुल रऊफ मक्सी का गाना लगाएगा. बिल्कुल जी लगाते हैं. अच्छा, उनका अलावा हमारे साथ हैं. चाचा कहते हैं आप क्यों नहीं करती वाइटिश लवली क्रीम और डी स्किन क्रीम के एड्स या सोप, या आपको अलो नहीं, क्या मतलब, किस वे में आप कहना चाह रहे हैं. अच्छा डूडी कहते हैं जडे घुमण फिरण लाए तवहां जी दिल सवे अंखीसो खाली हो जाए तो गूगल वारे नक्शे ते घुमी फिरी वठना कयो मां पाण ही अमेरिका में आया. सची उदाय बाकी वडो मजो इंदो आ. अच्छा इकलाक भाई कहते हैं सिद्रा शो पे आप सिंधी बोला करें, जब आप सिंधी बोलते हैं तो हाजिर साईं सिंधी गालाईंदा से बियो हुकुम कयो. अबे सर अबास से सगट मौजूद है सो तवां जो मोहब्बतूं आहे. और अरे बाबा बलोची गानो तो मुझे प्रोग्राम जी बीजी लगल आहे, सो केड़ी गाल कयो था. तमाम बस पोस्ट के लाइक एंड शेयर करना हलो. आई बुधायो तव्हां वाइट रेस जो कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पिया. आई वाइट रेस जा प्रोडक्ट अगर तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल नाहे त पोइ तव्हां डायल कयो 03157990595 बड़ी 315 79 5995 नंबर डायल कयो जे तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते वाइट रेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वञे. सो अवेलेबल करायो जल्दी जल्दी ताकि तव्हां बि इस्तेमाल करे सघो, तव्हां बि खूबसूरती

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्टों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश,
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्टों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: सिंध के माथे का झूमर,
3: DFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

Whitish Beauty Products and D-Skin Beauty Products के बारे में बताया जाता है. अगर आप भी Whitish Beauty Products का इस्तेमाल कर चुके हैं या फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं, बहुत से लोग ऐसे जो कि भाई लगा रहे हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि Whitish Beauty Products में अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग पहले से जानते हैं कि Whitish Beauty Products में आपको हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है. तो बिल्कुल वैसे ही जब पहले हम आप लोगों को Whitish Beauty Products के बारे में बताते हैं, तो जब हम दूसरे घंटे में आ जाते हैं, दूसरे घंटे में हम जब मुखातिब होते हैं आप लोगों के साथ, तो आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है. तो बिल्कुल जी, अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे पर कितनी ज्यादा जो है वो खास चीजें आपके चेहरे पर आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसके बारे में हम आप लोगों को बताना शुरू कर देंगे. ओके जी, तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. ऐसे के साथ साथ आप लोग जो है ना मुझे आज बताते जा रहे, मैंने जो टॉपिक आप लोगों से पूछा है तो उसका जवाब देते जा रहे हैं. सवाल मैंने कुछ यूं पूछा है कि आप मुझे बताएं कि क्या एक इंसान को दूसरा मौका देना चाहिए, क्योंकि ये एक थोड़ी सी ऐसी बात है जो कि वाकई कहीं ना कहीं जो है ना हमें थोड़ा कंफ्यूज कर ही देती है. तो आप बताएं आपका क्या कहना है इस टॉपिक के ऊपर. इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 8881 और फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं. फेसबुक वाली जितनी ऑडियंस है वो काइंडली पोस्ट को लाइक और शेयर कर दिया करें, जिससे ऐसा हो कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों पर जो है ना हमारे प्रोग्राम पहुंचे. और हमारे प्रोग्राम पहुंचने का मकसद ये है कि वो जान सकें कि Whitish Beauty Products एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हो चुके हैं. तो Whitish Beauty Products के बारे में आप लोगों को बताया, सो नाउ आप लोगों को बताने की बारी आ चुकी है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में. तो बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोगों को बताएंगे कुछ ऐसी बातें जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताना शुरू करूं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए बनाई गई है. और खास करके ऐसा सीन बन जाता है ना कि कई मरतबा हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है. और सेंसिटिव स्किन वाले लोग जो है ना वो अक्सर इस चीज में होते हैं कि भाई हमारे चेहरे पर कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा, कौन सा प्रोडक्ट हम लगा सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट नहीं हम लगा सकते. तो वाकई आपको थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए अपनी स्किन को लेकर. लेकिन ऐसा प्रोडक्ट आपको बताने लगी हूँ जो आप लोगों की अगर सेंसिटिव स्किन है तो उसके ऊपर भी आप बेफिक्र होकर लगा सकते हैं. तो बिल्कुल सी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि सेंसिटिव स्किन के मुताबिक भी तैयार किया गया है. और जनाब सबसे बेहतरीन बात कि ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है, यानी कि इसे जो है वो फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर बनाया गया है, जिसके अंदर आपको विटामिन ई बीड्स मिल रहे हैं, माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन है जनाब. अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से जो है ना आप लोगों की खूबसूरती बढ़ती है. और ना सिर्फ खूबसूरती बढ़ेगी बल्कि आप लोगों के चेहरे की जो स्किन है ना वो हमेशा के लिए प्रोटेक्ट भी रहेगी. जैसे कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, अब आप बहुत से लोग सोचेंगे यहाँ पर कि भाई ये क्या डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, तो ऐसा कोई सी नहीं है. जब डी स्किन ब्यूटी क्रीम को तैयार किया गया था ना तो इस तरह से डिजाइन किया गया कि इसे सेंसिटिव स्किन वाले भी लगा सकते हैं और सारे लोग लगा सकते हैं. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप, तो हर लोग जो है इसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी, सिर्फ दो दिनों में आप लोगों को वाजे जो ना नतायज देती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, जिसका इस्तेमाल आप करते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि बाकी आपकी स्किन जो है वो ग्लो करने लग जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो है यानी कि जी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर आपको मिलता है अल्फा आर्बुटीन, कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन और ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि आप लोगों की स्किन के अंदर तक जाकर की जल्द को चमकदार बनाने के लिए और डार्क स्पॉट्स को खत्म करने के लिए, आपके चेहरे को मॉइस्चराइज करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है. और इसी के साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन जो है ना वो बेहतर होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है और आपकी खूबसूरती में जो है ना वो निखार आना स्टार्ट हो जाता है. और मेरा अक्सर ये आप लोगों को कहती हूँ कि भाई आपकी जो खूबसूरती है ना वो ऐसा नहीं कि बस आप ये सोचा करें कि हमें बस गोरापन मिल रहा है तो हम खूबसूरत है. सिर्फ खूबसूरती का मतलब गोरापन नहीं होता, बल्कि आपकी स्किन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, साफ शफाफ होनी चाहिए, बेदाग होनी चाहिए, आपके चेहरे पर रिंकल्स ना हो, निशानात ना हो, तब जाकर आप मुकम्मल खूबसूरत बनते हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ये सारी चीजें आपकी जिंदगी से हटा देंगी और आपकी स्किन जो है वो खूबसूरत हो जाएगी, ग्लोइंग हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी और मॉइस्चराइज भी रहेगी. ओके, तो ये बात डी स्किन ब्यूटी क्रीम की थी. और इसके अलावा अगर हम डी स्किन फेस वॉश की जानेब आते हैं तो डी स्किन फेस वॉश के बारे में आप लोगों को बता दें, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप जब परचेज करें ना तो साथ में आप डी स्किन फेस वॉश भी लीजिएगा.
और जी डी स्किन का फेस वॉश मार्केट में अब अवेलेबल है, आप कहीं से भी जाकर आसानी परचेज कर सकते हैं। तो डी स्किन फेस वॉश जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों की स्किन जो है वो किस तरह ग्लो करेगी, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करते तो आपको खूबसूरती मिलेगी, लेकिन डी स्किन फेस वॉश से जो है ना आप लोगों की खूबसूरती और ज्यादा जो है ना वो बढ़कर सामने आ जाएगी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर बात करें या फिर डी स्किन फेस वॉश अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये हाइलूरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, जिसके अंदर जो है ना इस तरह के सीरम्स ऐड किए गए हैं जो कि आपकी स्किन को क्लीन बनाएंगे, आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेंगे और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करते रहेंगे। ओके, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करें तो साथ में डी स्किन फेस वॉश भी लगाते रहिए और इसी के साथ साथ आपको मिलेगी बेहतरीन वाली खूबसूरती। तो स्किन अगर सेंसिटिव भी है तब भी आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करती रहिए, ताकि आपको मिले वो वाला हुसन जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे। इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं देन आपने डायल करना है 03 15 नंबर डाल करें ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएं और दोनों प्रोडक्ट ही साथ में परचेज करें ताकि आपको

क्वालिटी आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ओके, तो पैनल की जाने बातें हैं, आपकी कुछ मैसेजेस हैं उनको पढ़ लेते हैं। अच्छा, हमारे साथ कौशल मौजूद। कहती हैं जन्नत आप कैसी हैं, मुझे सॉन्ग तो सुनाइएगा, मैं कोशिश करती हूँ आपको बिल्कुल गाना सुनाएंगे। और मिर्पो खास अब्दुल्ला महर हमारे साथ हैं। वालेकुम अस्सलाम बाजी, शो आपका सुपर है, थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई। और मिर्पो खास अब्दुल्ला महर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम नाइस है, सॉन्ग सुनाए कोई भी, बिल्कुल जी लगाते हैं कोई भी गाना। रसूलाबाद का आबिद हुसैन शबानी भाई, वालेकुम अस्सलाम। अदी लिखते हैं कि अदी जेको दिल ता लही वयो त पोइ इनखे मौको छा जो ॾींदा, सही ॻाल्हि आहे वैसे। और ये हमारे साथ हैप्पी गर्ल है, कहती है अस्सलाम वालेकुम सुजानी, शो मौसम की तरह ऑसम है, थैंक यू। कहती है अस्सलाम वालेकुम सुजानी, शो थैंक यू, बहुत अच्छा है। एक ही मैसेज को आपने 2 से 3 मरतबा शेयर कर दिया है, थैंक यू हैप्पी गर्ल। कहती है आज का टॉपिक क्या है, मुझे लग रहा है आपने सुन लिया होगा। और फारूक जुनी जो हमारे साथ है, अच्छा पिटारो से आप हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम आरजे सिद्रा मुस्कान जी, उम्मीद तो ठीक होंगी आप, जैसा नाम वैसा। ओके जी, ओके कहते हैं, माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, तमाम जबरदस्त शो आपका। तो ओके जी, फारूक भाई आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू। फहद डेरी है सऊ डेरी फ्रॉम नवाब शाह, कहते हैं सलाम अदी, शो तमाम जो नाइस आए, थैंक यू भा। ओके जी, सो हमने सुना यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना, एक और ब्यूटीफुल गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है, तो हम वो भी सुनेंगे। जीशान रोखड़ी की आवाज में ये गाना होने वाला है। और साथ साथ आप प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट लगाया या फिर कौन सा प्रोडक्ट आप लगाना चाहते हैं, आप ये हमारे साथ जरूर शेयर कर दिया करें, ताकि हमें पता चले कि भाई जान जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है वो वाकई खूबसूरत होना चाहते हैं। और ये बात जो मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सिर्फ खूबसूरती जो ना गोरापन नहीं होता, बल्कि आपके चेहरे की खूबसूरती जो होती है ना, वो ऐसा है कि आपके चेहरे पर एक्नी नहीं होना चाहिए, निशानात नहीं होनी चाहिए, आपके चेहरे की स्किन बिल्कुल ग्लोइंग होनी चाहिए और सॉफ्ट होनी चाहिए और रिंकल फ्री होनी चाहिए, तब जाकर आप बनते हैं मुकम्मल खूबसूरत। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कीजिए, आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए, वहां से नाम लेकर तलब कीजिए।

दर्दे दिल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं स्वीटी को खुश आमदीद के साथ। लदड़ी कहती हैं हम टॉपिक में माफ तो कर दूंगी बट मैं फिर पहले जैसी नहीं रहूंगी। उसके साथ माफ करना अच्छी बात होती है बट दूसरा मौका देना भी नहीं चाहिए ताकि उसको अपनी गलती का एहसास हो। ओके जी। और उनके अलावा हमारे साथ दर्दे दिल कहती है कि खुदा करे तुम वो सारी जंगें जीत जाओ जिनसे तुम अकेले लड़ लड़ कर थक चुके हो जो तुम्हारी उदासी का सबब बनते हैं। ओके जी। अली मुर्तजा अंसारी मर्सद मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड आफ्टरनून कहते हैं। और हिंसी अली मुर्तजा कहते हैं कि प्लीज लगाते हैं जी आपकी पसंद का भी गाना। और यहाँ पर हमारे साथ हैं एमन सारी कहते हैं कि ये टॉपिक मेरे दिल के मतलब ये सिर्फ अखलाक भाई बात तो बिल्कुल सही कर रही हैं आप। और हैं जी हमारे साथ यहाँ पर गुलरेज अली चानू कहते हैं माफ करना अच्छी बात है, माफ करना चाहिए इंसान को तो अल्लाह भी माफ करता है। इंसान कितना गुनहगार हो तो हम कौन होते हैं जो माफ ना करे। ओके कहते हैं सलाम आप कैसी हैं, आज 2 साल के बाद आपके शो में आया हूँ। शो अच्छा है, मास्टर मंजूर का गाना लगाइए। बिल्कुल जी लगाते हैं आपके लिए। थैंक यू आप हमारे साथ हैं। मूसा कोरी हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते भाई को। बिलाल अली हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम। अनवर भाई कहते हैं टॉपिक बिल्कुल भी मोक्यो ननियन घुर्जे जेड़ा रो तेड़ा खत्मा। चले नहीं, बहुत शुक्रिया। और जी यहाँ पर हमारे साथ हैं गुड इवनिंग, हाय सिद्रा जी आप कैसी हैं, योर शो इज वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गाती बलोच फ्रॉम कराची, खुश आमदी।

तो गाना सुनिए, इस गाने के बाद जो है वो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, जल्दी से वापस आप लोगों के पास आते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार, सिर्फ बिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

शब्बीर जी, बहुत ही प्यारा गाना यहाँ पर आपने एंजॉय किया और मास्टर मंजूर साहब की आवाज में गाना था और इसी के साथ साथ आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश एंड

व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके जी, तो हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में और इसी के साथ जिन लोगों ने अभी अभी सुनना स्टार्ट किया, जिन लोगों ने स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ दिया है, सबको वेलकम एंड खुश आमदीद की मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ यहाँ पर भाई जान आप लोगों को बताया जाता है प्रोडक्ट के बारे में, और यहाँ पर प्रोडक्ट का अगर जिक्र हो तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना, इनके बारे में आप लोगों को जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर अगर देखा जाए तो आप लोगों की खूबसूरती जो है ना वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप अपनी खूबसूरती का ख्याल नहीं रखते हैं तो वक्त के साथ साथ आपकी खूबसूरती जो ना वो मानन पर जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी खूबसूरती हमेशा बरकरार रहे, आप हमेशा ग्लो करती रहे, तो आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके देखना है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आपकी जल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए तैयार की गई एक मयारी ब्यूटी क्रीम है। ये जल्द को नमी फराहम करती है और जनाब चेहरे को नरम मुलायम और ताजा रखने में भी मदद देती है। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का बाकायदा से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जल्द की बेरोनगी कम हो जाती है, चेहरा ज्यादा साफ रोशन और दिलकश दिखाई देता है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल है जनाब खुसूसी अज़ा, जैसे कि आप जानते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम में वाइटामिन ई बीट्स है, माइक्रो बीट्स फॉर्मुलेशन है जो कि आपकी स्किन के अंदर तक जाकर आपके चेहरे को जो है ना वो खूबसूरत बनाने में काम आते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करें तो साथ में आपने डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल भी लाजमी करना है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और साथ में डी स्किन फेस वॉश लगाएं जो कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, जो कि आपकी स्किन को क्लीन बनाता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। तो ये लगाने के तरीकेकार बिल्कुल वही होंगे जैसे आप कोई भी सोप लगाते हैं, कोई भी फेस वॉश लगाते हैं, कोई भी नाइट क्रीम लगाते हैं। तो जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाना चाहें तो ये नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे सोने से पहले। अपना फेस वॉश कीजिए डी स्किन फेस वॉश के साथ, उसके बाद इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, फिर देखिए कमाल कितने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं।

ओके जी, आपने शाद बब्बर की आवाज में बहुत ही प्यारा गाना सुना और इसी के साथ साथ आप सुन रहे प्रोग्राम व्हाइट एशियन डे स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो अगर आप भी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए जी। आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर चले जाए, वहाँ पर आप मालूम लीजिए वहाँ पर अवेलेबल है ये प्रोडक्ट तमाम। अगर मिल रहे हैं तो परचेज कीजिए, नहीं मिल रहे तो फिर आपने डायल करना है 03157990595 बड़ी 315 79 9595 नंबर ते तव्हांखे राबतो करणो पवंदो। ऐं तव्हां कॉल कयो या मैसेज करणो के ॿुधाए त तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स खे ऐं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स खे अवेलेबल कराइण चाहियो था। तो अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पिया त तव्हां मूंखे ॿुधायो जी तव्हांखे इहा बि यानी कि तव्हां अगरि का बि ॻाल्हि पुछण चाहियो था, को अहिड़ो डाउट आहे जेको तव्हां क्लियर करण चाहियो था त तव्हां मूंखां पुछी सघो था। उन खां अलावा अगरि तव्हां इस्तेमाल कयो पिया त इहो मूंखे ॿुधायो जी मूंखे ख़बर पए त मुंहिंजा कहिड़ा कहिड़ा लिसनर आहिनि जेके डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन फेस वॉश जो यूज़ कनि पिया। अगरि तव्हां वैसे इहा बि ॻाल्हि आहे, अगरि तव्हां थोरो क्रीमनि खां अवॉइड कंदा त तव्हां पहिरियां डी स्किन जो फेस वॉश लॻाए ॾिसो ऐं तव्हांखे सुठा रिज़ल्ट मिलनि। उन खां पोइ तव्हां डी स्किन जी ब्यूटी क्रीम लॻाए ॾिसो, ठीकु आहे। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका सेंसिटिव स्किन वारनि जे लाइ बि ठहियल आहे, ख़ासि करे सेंसिटिव स्किन वारा माण्हू लॻाइनि। ऐं हीउ डॉक्टर जे मशवरे सां तयारु थियल आहे, डॉक्टर जी निगरानी जे अंदरि तयारु थियल प्रोडक्ट आहे। तो तव्हां ट्राए करे ॾिसो, तव्हांजी स्किन सफ़ा वीआईपी थी वेंदी ऐं तव्हां ग्लो कंदा, तव्हांजी ख़ूबसूरती तव्हांखे वापसि मिली वेंदी ऐं तव्हां शाइन कंदा रहंदा। ओके जी, सो कुछ आपके फीडबैक से वो जरा पढ़ लेते हैं। अच्छा, एम अंसारी कहते हैं अगर किसी का किरदार देखना चाहते हो तो उसे अख्तियार देकर देखो। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात। सैयदा बुखारी कहती है अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, क्या हाल है आपके। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपका नसीब अच्छा करे और आपको हमेशा खुश रखे। आमीन सुमामीन। थैंक यू सो मच सैयदा बुखारी, आप हमारे साथ। गुलाम रहीम बलोच हमारे साथ ही, प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया उसके लिए। और हमारे साथ हैं जी बिलाल, कहते हैं कि मुठा मुश्किल वक्त में बदल चेहरा वो सदाई साथ नींदे सिर्फ खुदा के डिठो है, क्या बात है। अली मुर्तजा लिखते हैं कि वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूँ मैं, अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूँ। ओके जी, अब्दुल रजाक बलोच हमारे साथ है, दादू से आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है, यासीन खंड में सुन रहे हैं। दर्द दिल कहती है टॉपिक चंदा माफ कर देना चाहिए लेकिन मौका नहीं देना चाहिए। कहते हैं ना जो मौका दे उससे कभी धोखा नहीं दो और जो धोखा दे उसे कभी मौका नहीं दो। ओके ओके जी, और कहती हैं कि आज मेरी कजन आपका शो सुन रही है, आयशा जाहिदा अस्मा अरीबा और मेरी छोटी सिस अलीजा भी, सबको वेलकम करते हैं। अच्छा, विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगोजा से दिलावर हुसैन सोलंगी हैं। बाजी सदरा आप कैसी हैं। बाजी हम आपके बड़े फैन हैं, आप चाहे हमारे गाने चलाएं या ना चलाएं लेकिन आपसे नाराज नहीं होंगे, बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई। और लिखते हैं कि आज कोई गाना नहीं, थैंक्स मेरे भतीजा है सरफराज अली सोलंगी, उनको सलाम कहना और जो आपका शो फेसबुक पर सुनते हैं। और नजीर सोलंगी है, आसिफ सोलंगी एंड मुबशर सोलंगी, सबको वेलकम जी, थैंक यू। और हमारे साथ है मुनव्वर भाई, मुनव्वर अली मुगल कहते मौका देना चाहिए, मेरा अल्लाह भी इंसान को कितने मौके देता है तो इंसान क्या चीज है। ओके वेरी नाइस। हैप्पी गर्ल कहती है सिद्धू जानी माफ कर देना चाहिए, माफी अल्लाह को पसंद है। ओके वेरी नाइस। और कहती है कि मैं प्रोडक्ट यूज नहीं करती लेकिन मैं जो है ना अपनी बुआ को गिफ्ट जरूर करूंगी डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और साथ में आप डी स्किन फेस वॉश भी उन्हें गिफ्ट दीजिएगा, ठीक है। और सजाद अली जमाली है, अब्दुल वकील जमाली नवाबशाह से आप हमारा शो सुन रहे हैं, वेलकम जी। ये मौजूद है वालेकुम अस्सलाम टूफ टूसल से मौलाई मुजाहिद बोजार, कहते हैं सरू जी आप कैसी हैं, खैरियत से जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे। चाचा खालिद बिल्कुल फेसबुक पर थोड़ा इशू आ गया, उस वजह से डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं आप लोगों से, और थैंक यू आप हमारे साथ।

बिल्कुल जी सर, प्रोग्राम आप सुनते हैं जनाब, अगर आप लोग हमारे साथ मौजूद है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये प्रोग्राम आप लोगों तक डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से जो है ना वो स्पॉन्सर्ड किया जाता है। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हमारे साथ शेयर किया करें कि आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, ताकि सुनने वाले लोगों को पता चले कि बाकी जो लोग हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं कौन कौन सा प्रोडक्ट और उनको कितने अच्छे वाले रिजल्ट मिलते जा रहे हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, और उसके साथ साथ अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारी स्किन तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, हम क्रीमों से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सेंसिटिव स्किन के लोगों के लिए तैयार की गई है। ज्यादातर जो है ना आप लोग अगर इस मामले में थोड़ा सा ख्याल रखते अपनी स्किन का कि भाई हमारी स्किन के ऊपर एक्नी ना आ जाए, एक्नी प्रॉब्लम आ जाते तो फिर आप बड़ा परेशान हो जाते, वैसे होना भी चाहिए। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार की गई है और पाकिस्तान में बहुत ही कम, यानी कि 3-4 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिनके अंदर वाइटामिन ई बीड्स मौजूद है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी उन्हीं में शामिल है जिसके अंदर वाइटामिन ई बीड्स है, माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन है जो कि आप लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और साथ में डी स्किन फेस वॉश लगाइए जिसके अंदर जो है ना आपको हाइलोरोनिक एसिड सीरम मिलेगा, और ये इतना अच्छा सीरम होता है जो कि आपकी स्किन को क्लीन रखेगा, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और साथ ही साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। क्योंकि कई मरतबा ऐसा हो जाता है कि हमारी स्किन जो है ना वो रूखी सूखी सी हो जाती है और ऐसा फील होता है कि भाई क्या करें कि हमारी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज दिखे, हमारी स्किन ग्लोइंग दिखे, तो आप डी स्किन फेस वॉश का यूज करके अपनी स्किन को जो है ना परफेक्ट बना सकते हैं। तो लड़के हो लड़कियां हो सभी इस्तेमाल करेंगे, अपनी खूबसूरती को बढ़ाइए और इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन फेस वॉश। ओके जी, लास्ट ट्रिक हमने लिस्ट में लगा लिया है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, और अब्बास महर हमारा शो सुन रहे हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं इसी के साथ। अच्छा हैप्पी गर्ल कहते हैं सिद्धू जानी अम्मी को आपका हंसना बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच अम्मी को, थैंक यू बोलिएगा, और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात मेरी होती है जी 5 बजे वाले प्रोग्राम, क्योंकि इस प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है, वरी इंशाल्लाह तमाम से मुलाकात असांजी थे पई 5 बजे वाले प्रोग्राम में। सो 5 जो इलाही सो ख्याल रखना, आई कहती का गलती थी मुझे तो माजरत कहूँ था, जिना फीडबैक रही वयान सभी का माजरत कहूँ था। सो मोकलानी ना ही बाबू सिन सलामत सा सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: बलूचिस्तान में फोर्सेज जो दहशतगर्द इंकलाब गरिला ऑपरेशन शाबान जारी, वधीक चार दहशतगर्द जहनम भीड़ा। ऑपरेशन दौरान बाजीफल दहशतगर्द जो अंग वधीक 121 थी पयो। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब बलूचिस्तान में पाक फौज एफसी पुलिस जो गरियल ऑपरेशन जारी आहे। ऑपरेशन दौरान वधीक चार दहशतगर्द मारिजी विया आहिनि। ऑपरेशन शाबान में मारिजीफल दहशतगर्दनि जो अंग वधीक 83 थी पियो। गॾियल ऑपरेशन दौरान मारिजीफल दहशतगर्दनि जो अंग वधीक 121 थी पियो आहे।
2: रेंजर्स कैंप ते हमले में भारत मुलविस निकतो। हमले जी रिथाबंदी अफगानिस्तान में थियण जी तस्दीक। हमले जे मास्टर माइंड समेत समूरा सहूलतकार गिरफ्तार। दहशतगर्दन डोह जो बे एतराफ़ करे वरतो। पुलिस आफिसरन सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे घरू वज़ीर ज़ियालंजार चयो आहे त रेंजर्स कैंप ते चार दहशतगर्दनि हमलो कयो हो। टे दहशतगर्द अफ़गानी ऐं हिकु बाजोड़ जो रहवासी हो। रेंजर्स जे मास्टर माइंड कारी बशीर खे रेंजर्स गिरफ़्तार कयो आहे। SSP CTD चयो त हमले जी रिथाबंदी अफ़गानिस्तान में कई वई। दहशतगर्दनि में जानान अब्दुल हादी, उमर फारूक ऐं उस्मान शामिल हो। दहशतगर्द उस्मान खे ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार कयो वियो। दहशतगर्दनि खे अफ़गानिस्तान खां बलूचिस्तान रस्ते कराची पहुचायो वियो। 13 सहूलतकार मुलविस हुआ। रेंजर्स हथां गिरफ़्तार कारी बशीर डोह जो बि एतराफ़ कयो आहे।
1: अमेरिका ईरान विच में अपने हुरमुज तां सुरक्षा चिकटाण खत्म न थी। बिन्ही मुल्कनि जा हिक ॿिए जे थाकनि ते मिज़ाइल हमला जारी। अमरीकी फ़ौज लगातार 5 कलाक ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते बमबारी। सेंटकॉम मूजिब बोशर, छाबा, जासक, कुनार्क, अबू बूसा ऐं बंदर अब्बास ते हमला कया विया। हमलनि दौरान ईरान जे दिफ़ाई निज़ाम ड्रोन ऐं मिज़ाइल थाकनि देरी सलाहियतुनि खे निशानो बणायो वियो। ईरानी फ़ौज जा बि अमरीकी अॾनि ते जवाबी वार। बहरीन ऐं उतन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो। पाकिस्तान इनकलाब मूजिब बहरीन में अमरीका जे अल जफ़ीर वारे अॾे खे निशानो बणायो वियो आहे। अपने हुरमुज पार कंदड़ ॿेड़ियुनि खे बि नाकारा बणायो वियो आहे।
2: ॿिनि बहरी जहाज़नि ते ईरानी हमले जे नतीजे में हिकु भारतीय शहरी मारिजी वियो ऐं 8 ज़ख़्मी थिया आहिनि। गॾियल अरब इमारतनि जे दिफ़ा वारे वज़ारत मूजिब अबन हरमुज वेझो ईरानी फ़ौज ॿिनि बहरी ॿेड़नि खे निशानो बणायो आहे। हमले जे नतीजे में हिकु भारतीय शहरी मारिजी वियो। 8 ज़ख़्मियुनि मां ॿिए 6 भारतीय ऐं 2 यूक्रेनी शहरी शामिल आहिनि।
1: दहशतगर्द मुल्क खे नुक़सान पहुचाइण चाहिनि था। कराची दहशतगर्द निशाने ते आहे। रेंजर्स जे हमले में सभु जवाबदार गिरफ़्तार थी विया आहिनि। कराचीअ में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो सिंध आलमी सणपकारी जो मर्कज़ बणिजी रहियो आहे। हुकूमत सणपकारनि खे बहितर माहौल फराहम करण लाइ पुरज़म आहे। कणक ज़खीरो करण ख़िलाफ़ कारवायूं कयूं पिया। हुकूमती कारवायुनि सबबि अटे जे अघ में इस्तिहकाम आयो आहे।
2: आज़ाद कश्मीर में पामदी मड़ियल जॉइंट एक्शन कमेटी जे हथियारबंदनि जो रावाला कोर्ट में फोर्सिस ऐं शहरनि ते हमिलो। हिकु रेंजर सहलकार शहीद, हिकु ज़ख़्मी। पाबंदी मड़ियल एक्शन कमेटी जे हथियारबंदनि मतियाल मीरवा में बस अॾे ऐं रावाला कोर्ट भरिसां शहरी आबादीअ ते हमिलो कयो। फोर्सिस हमिलो रोकण जी कोशिश कई त हथियारबंदनि जदीद हथियारनि सां फायरिंग कई। माहिरनि मूजिब पाबंदी मड़ियल तनज़ीम जे हथियारबंद जथनि ख़िलाफ़ एक्शन अंटर थी वियो आहे।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
4: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
3: अब दर्द को कहें अलविदा
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
3: जी हाँ,
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: ये ऑइंटमेंट
3: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
4: दर्द, सोजिश
3: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
4: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
3: गर्दन और कमर की तकलीफ,
4: पट्ठों के खिंचाव,
3: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
4: और जल्दी जलन में मुफीद।
3: मुतासरा जगह पर दिन में 2-3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
3: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: पहजो शहर, पहजो घर, सकरंट, आई सकरंट जो आवाज
6: जी एफ एम 90.8।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

बीवी के इंतकाल के दिन हामिद साहब की उम्र सिर्फ 45 वर्ष थी। ताजियत के लिए आने वाले हर शख्स ने एक ही मशवरा दिया, हामिद अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, दूसरी शादी कर लो। वो हर बार मुस्कुरा देते, फिर अपने 12 साल बेटे अम्मार के सर पर हाथ रखकर कहते, अल्लाह ने मुझे इसकी सूरत में मेरे बीवी की आखिरी अमानत दे दी है, अब मैं बाकी जिंदगी इसी अमानत की हिफाजत में गुजरेगी। इसके बाद उन्होंने अपनी वाकई अपनी जिंदगी अपने बेटे के नाम कर दी। कारोबार बढ़ता गया मगर इनकी दुनिया सिमट कर सिर्फ एक लड़के की मुस्कुराहट रह गई। अपनी ख्वाहिशें, अपनी तन्हाइयां, अपनी रातें सब उन्होंने खामोशी से दफन कर दी। वक्त ने पलटा खाया, अम्मार जवान हुआ, आला तालीम हासिल की। एक दिन बाप ने सारा कारोबार उसके हवाले कर दिया। अब तुम संभालो, मैं थक गया हूँ। लेकिन थकन जिस्म की नहीं थी, रिश्ते की थी, जिसे वो खुद अपने हाथों आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटा रहे थे। फिर अम्मार की शादी हो गई, घर में नई हंसी आई, नए पर्दे लगे, फर्नीचर बदला, बर्तन बदले, हत्ता के बावर्ची खाने की तरतीब भी बदल गई और हामिद साहब वो भी बदल गए। अब वो कभी दफ्तर में बैठे रहते, कभी किसी पुराने दोस्त की दुकान पर चाय पीते, शाम ढले सिर्फ सोने के लिए घर लौटते। अपने ही घर में वो ऐसे चलते जैसे किसी और के मकान में मेहमान हो। एक दोपहर सभी एक दस्तरखान पर बैठे थे, हामिद साहब ने रोटी का आखिरी निवाला तोड़ते हुए नरमी से कहा, बेटा अगर जरा सा दही हो तो दे दो। बावर्ची खाने से बहू की आवाज आई, आज घर में दही नहीं है अब्बा जी। अच्छा, उन्होंने पानी का घूंट लिया, खामोशी से उठ गए। किसी ने इनके चेहरे पर नजर नहीं डाली, वो हसबे मामूल वॉक के लिए निकल गए। इनके जाते ही बहू ने फ्रिज खोला, ठंडी दही की प्याली निकाली, अम्मार के सामने रख दी। गर्मी बहुत है, दही के बगैर तुम्हारा खाना मुकम्मल नहीं होता। अम्मार ने प्याली की तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ, जहाँ से अभी अभी इसके बाप की आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चप्पलों की आवाज गुम हुई थी। उसने परीक्षा के लिए खामोश हो गया। चंद रोज गुजरे, एक सुबह इसने अपने वालिद से कहा, आज 10 बजे तैयार रहेगा, हमें कचहरी जाना है। वालिद ने दरियाफ्त किया, क्यों? हामिद ने कहा, आपकी शादी है। हामिद साहब के हाथ से अखबार फिसल गया, पागल हो गए हो इस उम्र में मुझसे शादी, मुझे किसी भी शादी की जरूरत नहीं है और मैंने तो सारी जिंदगी तुम्हारे लिए गुजारी है। अम्मार ने पहली बार बाप की आंखों में देखा जैसे एक मर्द एक दूसरे की कुर्बानी को पहचानता है। अब्बा मैं आपके लिए अम्मा नहीं ला रहा, ना अपनी बीवी के लिए सास, और धीरे से बोला, मैं सिर्फ आपके लिए एक प्याली दही का बंदोबस्त कर रहा हूँ। कमरे में ऐसी खामोशी उतरी कि उनकी दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक भी शर्मिंदा महसूस होने लगी। अम्मार ने जेब से घर की चाबी निकाली, मेज पर रख दी। अच्छा, मैं और मेरी बीवी किराए के एक छोटे से फ्लैट में मुंतकिल हो जाएंगे। कल से मैं आपके दफ्तर में सिर्फ एक मुलाजिम की हैसियत से आऊंगा, तनख्वाह लूंगा, ताकि जिस घर की हर चीज आपने हमें दे दी, वहां रहने वालों को एक प्याली दही की कीमत समझ आ जाए। बावर्ची खाने में खड़ी बहू के हाथ से शीशे का गिलास छूटकर फर्श पर बिखर गया। टूटने की आवाज मामूली थी मगर उसके अंदर बरसों से जमी हुई खुदगर्जी में एक दरार पड़ चुकी थी। वो लरसते कदमों से बाहर आए, उसकी नजरें झुकी हुई थी फ्रिज से दही की वही प्याली निकाली जिसे चंद लम्हे पहले उसने सिर्फ अपने शौहर के लिए महफूज रखा था। खामोशी से हामिद साहब के सामने रख दी, उनके कदमों में बैठ गई। अब्बा जी मुझे माफ कर दीजिए, आज समझ आइए, मैंने आपसे आपका दही नहीं आपका हक छीना था। हामिद साहब ने कांपते हाथों से उसके सर पर हाथ रखा मगर उनकी आंखों में ऐसी नमी थी जो सिर्फ बुढ़ापे की तन्हाई जानती। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं बेटी, भूख रोटी ना मिलने से नहीं लगती, भूख उस दिन लगती है जब अपने ही घर में इंसान को यह एहसास दिला जाए कि वो एक्स्ट्रा है, वो इजाफी है। अम्मार ने आगे भर कर अपने बाप के हाथ थाम लिए। उस रोज ना कोई अदालत गया, ना कोई निकाह हुआ, ना कोई घर बिखरा, सिर्फ एक दस्तरखान पर बैठे तीन लोगों ने पहली बार एक दूसरे को देखना सीख लिया। और उस दिन के बाद उस घर में कभी दही खत्म नहीं हुई क्योंकि बहू ने फ्रिज में दही रखने से पहले अपने दिल में एहतराम रखना सीख लिया। रिश्ते रोटी से नहीं निपते, इज्जत से निपते। जिस घर में बुजुर्ग की इज्जत कम हो जाए वहां नेमतें चाहे जितनी भी हों बरकत खामोशी से दरवाजा छोड़ जाती है। और फिर हम और आप हर आए गए से जब गुफ्तगू करते हैं तो ये कह रहे होते, न जाने क्या हो गया है, बरकत ही नहीं रही। पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब ना जाने क्या है, और हर चीज से बरकत ही खत्म हो गई है। ये सेंटेंसेस आपके कान में भी पड़े होंगे या शायद आपने भी अपनी किसी जानने वाले से कहे होंगे। खुद एहतजा भी कीजिए तो आपको खुद ब खुद जो है मालूम हो जाएगा कि ये बरकत क्यों उड़ गई है, ये बरकत क्यों खत्म हो गई है। क्योंकि यू नो वेरी वेल रब हमें हमारी नीयतों से नवाजता है। एम आई राइट?

0: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेटिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
1: ये मासर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब,
1: सिर्फ मुतासर जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फौरी एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दल में कि हमें कुछ भी वहाँ पॉजिटिव नहीं दिख रहा होता और फिर हम पे दर पे गलतियाँ करते हैं, गलत काम कर रहे होते हैं. होता कुछ भी नहीं है, होना वही है जो रब ने जो है हमारी किस्मत में लिखा हुआ होता है. कोशिश एफर्ट पॉजिटिव करनी है आपने, ऐसे बैड जो है ना वेव की जानिब नहीं जाना है. अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊँ, पॉपिंग बबल वार्प से मुराद वो इत्मीनान बख्श अमल है जिसमें प्लास्टिक की पैकिंग शीट में मौजूद हवा से भरे बुलबुलों को दबा कर फोड़ा जाता है. और बचपन में ही आप लोगों ने भी ये मतलब किया होगा ऐसा, जैसे होता है घर वाले कोई न्यू चीज़ मार्केट से लाते हैं, जब अनबॉक्स की जाती है तो उसमें से वो पैकेट शॉपर वगैरह निकलता है, उसमें छोटे छोटे से बबल्स बने होते हैं. बचपन में यकीनन ये आपने किया होगा. इस हवाले से माहिरीन नफ्सियात का कहना है, पॉपिंग बबल रैप यानी बुलबुलेदार प्लास्टिक को फाड़ना जहनी दबाव कम करने, दिमाग को सुकून देने, खुशी का एहसास पैदा करने में मददगार साबित हो सकता है. अगर आप भी किसी पार्सल से निकलने वाले बुलबुलेदार प्लास्टिक के बुलबुले फोड़ने से खुद को नहीं रोक पाते तो इसे परेशान होने की जरूरत नहीं है. माहिरी नफ्सियात के मुताबिक ये आदत बचकानापन की अलामत नहीं है बल्कि दिमाग को सुकून पहुंचाने और जहनी दबाव कम करने का एक फितरी अमल है. द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बुलबुले फोड़ने के दौरान इंसान को बयक वक्त छूने, आवाज सुनने, बुलबुला गायब होते देखने का तजुर्बा हासिल होता है. ये मुतवक्की और मुसलसल हिस्सी रद्द अमल दिमाग को सुकून देता है, ज़हनी यकसोई भी पैदा करता है. अब माहिरीन का कहना है कि हर बुलबुले फूटने पर दिमाग को छोटी सी कामयाबी का एहसास होता है जिससे खुशी इत्मीनान से मुतालिक दिमागी निज़ाम मुतहरिक होता है. यही वजह है कि ये अमल बहुत से अफराद को खुशगवार महसूस होता है. तो जनाब ये किसी भी तरह गैर संजीदगी नापुख्तगी की अलामत नहीं है बल्कि एक बेजरर सी आदत है जो ज़हनी सुकून और जज्बाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद दे सकती है. और एक और सोशल मीडिया पोस्ट, ये पोस्ट रीड करने के बाद मेरी अपनी कैफियत कुछ अजीब सी हो गई है. जब मैं आपसे शेयर करूंगी तो आप भी मेरी तरह ही फील करेंगे जैसे मैं फील कर रही हूँ इस वक्त. जापान में मुबैना तौर पर खातून ने साथ रहने वाली खातून के होंठ सी दिए जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया. ये वाकिया कोगा शहर में पेश आया. 49 साला मासाई सकोराई सोई और धागे के से साथ ही खातून के होंठ सी दिए. मुतासिरा 42 साला खातून घर से मास्क पहनकर बाहर निकली और करीबी दुकान पर जाकर एक कागज दिखाया जिस पर लिखा हुआ था, प्लीज हेल्प मी, बराह करम मेरी मदद कीजिए. दुकान के मुलाजिम ने तकरीबन पुलिस को 1:30 बजे कॉल की जिस पर मुलजिमा को गिरफ्तार किया गया. मुतासिरा खातून ने पुलिस को बताया वो किसी बात पे नाराज थी, इसने ये कदम उठाया, मुझे बड़ी डर लगा इस खतरनाक नाराजगी से. और होंठ को नाच से नीचे से लेकर निचले होंठ तक सुई से कई बार छेदा गया, दोनों होंठों को साथ मिलाकर सिया गया और जो खातून मुतासरा हुआ है उसके मुंह के अंदर से जो है दागा भी गया है जिससे वो मजीद मुश्किल में आ गई है. तो पुलिस ने मुतासरा खातून की सेहत से मुतालिक बस इतना ही कहा है कि उसकी हालत खतरे से बाहर है और आग लग जाए ऐसी नाराजगी को जिसका नतीजा इतना खतरनाक हो, यही कहूंगी और क्या कहूंगी. किसी की जान पे बन जाए और किसी की अरदार ठहरी तो भाई दोस्ती करते हुए भी बहुत एहतियात करें और नफ्सियाती किस्म के लोगों से जो है ना दूरी रहें. ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता वो जो है अपनी नफ्सियाती पन की वजह से जो है किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाए, यानी आप लोगों को नुकसान पहुंचाए. तो प्लीज यार एक से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, बहुत सोच समझ के दोस्ती करनी चाहिए. यहाँ पर हम लेते एक छोटा सा ब्रेक.

0: 5HBT3 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bhatpur khubiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye. Skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White H Beauty soap se mile. Chamakta nikhar taazgi ke saath. White H Beauty Cream. Glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
1: छा तमाम भी पैंजू ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए थे ठाण चाहियो था जिते हो जे तहफुस जदी सहूलतों आई मंजूर थेल सिक्योरिटी
2: तपोई भलीकार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
1: सखर शिकारपुर रोड ते
2: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल सामू
1: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थेल
2: एक शानदार आई काबिल एतमाद रिहायशी मनसूबो
1: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
2: रिहायशी प्लॉट्स 80-120 150 आई बसो गजा
1: आई कारोबारी मौके लाइक कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज आई 600 गज
2: हिते तमा के मिलन थियो जदीद सहूलतों
1: साफ मिठो पानी
2: बिजली गैस
1: चोही कलाका सिक्योरिटी
2: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल आई सबका वडी गाल ही मंसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेजो आहे
1: जेको रिहायश आई सीड़पकारी बिनी लाइ बेहतरीन मौको बनाए थो
2: अजी पेंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो
1: फौरी कब्जो आई फौरी रजिस्ट्री
2: कॉन्टेक्ट
1: 03-00-93-17-252
2: and 03-13-27-57-860 Husaini Manzil Housing Scheme Sakhar
1: Tamaache Mehfooz Mustaqbil hai behtareen investment jo behtareen intekhab हमारे शहर सखर में होम्योपैथिक में 43 साल जो तजुर्बो रखंदड़ प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद मरीजन जो मुआइनो करे रहे वाहे हर किस्म के आसाबी अमराज जोड़न जो सूर मैदे में जलन कब्ज तेजाबियत गुर्दन जी पथरी बवासीर हाजमे जी खराबी बेन बीमारियों जो बगैर ऑपरेशन होम्योपैथिक तरीका इलाज मुताबिक मरीजन जो इलाज करे रहो आहे प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठान रोजाना सुबह 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुमो मोकल एड्रेस आगा होम्योपैथिक क्लिनिक पुलिस हेडक्वार्टर चौक सखर राब्ते जे लाए 03-26-22-00-440
3: तहजीब सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
4: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज GAFM 88 की आवाज
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए। पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हम इन मोटापे की गिरफ्त में जो भी पर्द आता है वो अपनी जाहिरी खूबसूरती खो बैठता है। मर्द और खवातीन दोनों इसकी लपेट में आते हैं और आमतौर पर देखने में ये आया है कि इस बीमारी में मुब्तला खवातीन मर्दों की निस्बत ज्यादा परेशान रहती हैं और किसी न किसी तरीके से इससे छुटकारा हासिल करना चाहती हैं। अक्सर खवातीन अपनी गजा कम से कम करने के लिए मजबूरन दिन में सिर्फ एक ही वक्त खाना खाने पर गुजारा करती हैं ताकि वो इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकें, लेकिन ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। नॉर्मल लड़कियां इस बारे में बहुत परेशान रहती हैं, उन्हें डर होता है कि कहीं उनका वजन हद से ज्यादा ना बढ़ जाएगा। थोड़ा बहुत वजन बढ़ भी जाए तो वो सुबह का नाश्ता नहीं करती है या फिर रात का खाना छोड़ देती हैं। ये बिल्कुल गैर मुनासिब तरीका है, इसलिए ऐसा करने से इनमें बहुत से अहम गजाई अज्जा की कमी वाकई हो जाती है। मुनासिब वजन के लिए ये जरूरी है कि गजा के जरिए से हासिल होने वाली कैलोरीज खर्च होने वाले कैलोरीज या तवानाई की बराबर हों, यानी दाखिली और खारजी तवानाई में तवाजुन होना चाहिए। चूंकि मोटापे के शिकार अफराद में अमूमन ऐसा नहीं होता बल्कि इनकी दाखिली तवानाई खारजी से ज्यादा ही होती है, इसलिए मुनासिब वजन के लिए जरूरी है या तो दाखिली तवानाई को कम किया जाए या खारजी तवानाई को बढ़ा दिया जाए। गजा में चिकनाई नशास्ता कम करने से दाखिली तवानाई को कम किया जा सकता है जबकि वर्जिश से खारजी तवानाई को बढ़ाया जा सकता है। मोटापा ना सिर्फ बजाते खुद एक बीमारी है बल्कि इससे कई दूसरी बीमारियां भी लाग हो सकती हैं। मसलन खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाने से दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस वगैरह। इस तरह मोटापा जिंदगी के कई कीमती बर्स भी कम कर सकता है और मोटापे की बहुत सी वजूह हैं जिनमें से कुछ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको भी जो है इस बारे में आगही हो और आप एहतियात कर सकें। मोटापा मौरूसी भी हो सकता है, अक्सर देखने में आया अगर वालदेन में ये बीमारी पाई जाती है तो उनके औलाद भी अमूमन इसका शिकार होती है। और इस बीमारी की एक आम वजह जरूरत से ज्यादा खाना खाना है। लोग चिकनाई नशास्तेदार गजाएं ज्यादा खाते हैं तो उनका वजन बढ़ने लगता है, मसलन आइसक्रीम चॉकलेट मिठाइयाँ वगैरह। और मोटापा उन लोगों में भी ज्यादा होता है जो जिस्मानी तौर पर एक्टिव नहीं होते, मुतहरिक नहीं होते। बाज़ औक़ात हमारे दरों अफजोई हदूद का निज़ाम भी इस बीमारी का बाइस बनता है। मोटापे से छुटकारा हासिल करने के दो तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। वो गजाएं जिनमें ज्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं उनकी मिकदार कम से कम कर दी जाए। हमारी गजा में मौजूद तीन अज्जा यानी चिकनाई नशास्ते लमियात यानी प्रोटीन्स हमें हरारे मुहैया करते हैं। इसका मतलब ये नहीं वजन कम करने के लिए इनका खाना भी बहुत कम कर दिया जाए। इसके लिए ये अहम गजाई अज्जा हैं, इन्हें मुनासिब मकदार में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और वज़न कम करने के लिए गजाओं के हवाले से चंद बातें आपसे शेयर करती हूँ। कच्ची और उबली हुई सब्जियाँ खानी चाहिए, मीठी और तली हुई अशियाँ कम खाएं। स्टार्च से दूसरी जो गजाएं हैं जिनमें स्टार्च मौजूद हो उन्हें कम खाना है। चावल आलू चुकंदर मकई डबल रोटी वगैरह वगैरह और वो सब्जियाँ फल जिनमें कैलोरीज कम हो उन्हें ज़्यादा खाने चाहिए। मसलन बंद गोभी गाजर पालक भिंडी सलाद टमाटर माल्टा खुबानी आड़ू वगैरह और ज़्यादा कैलोरीज वाली गजाएँ केक क्रीम वाली अशिया सूप और बनानास वगैरह कम खाएं। अंडे की सफ़ेद सिर्फ सफ़ेदी ही खाई जाए तो बेहतर है। खानों में घी की बजाय मयारी तेल का सफ़ेद मीट खाया जाए, सफ़ेद गोश्त खाया जाए तो बेहतर है। पानी ज़्यादा मशरूबात कम पीने चाहिए। इन चंद बातों पर अमल करके आप जो है अपने मोटापे से निजात भी हासिल कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। तो जनाब ये तो थी कुछ इन्फो जो आपकी हेल्दी लाइफ के लिए यकीनन आपकी रूटीन लाइफ में आपके काम आएगी। और यहाँ पर हमने मैडम रूना लेला को प्ले किया है, उनका बहुत ही प्यारा सा सुनहरी सा और गोल्ड

0: सचल की सरमस्त धरती,
1: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान,
0: GAFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: तमाम भी पैंजू ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए थे ठहण चाहियो था जिते हो जे तहफुस जदी सहूलतों आई मंजूर थियल सिक्योरिटी
3: तपोय भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
2: सखर शिकारपुर रोड ते
3: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी।

0: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
1: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
0: अब दर्द को कहें अलविदा
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
0: जी हाँ,
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
1: ये ऑइंटमेंट
0: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
1: दर्द, सोजिश
0: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
1: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
0: गर्दन और कमर की तकलीफ,
1: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
0: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
1: और जल्दी जलन में मुफीद।
0: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम। यहाँ वहाँ GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

क्योंकि मेरे आते ही झूठ हो गया, नहीं जी नहीं जी, आपके आने से पहले हो चुका है ये गुट जो हुआ है। मुझे अजीब सा लगता है, चीजें जो भी लेनी है ले लो, ये क्या। ओके अक्सर, बहुत शुक्रिया आपने टॉपिक को फॉलो किया। गुड इवनिंग, हाय आरजे गुलनाज जी, हाउ आर यू, गुड इवनिंग टू यू, वेलकम इन अवर शो, आई एम फाइन थैंक यू। अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची, आपने प्रोग्राम की पसंदीदगी का इजहार किया, वेलकम कहेंगे आपको, शुक्रिया आपका। हाउ आर यू गुल 78 मोरी से हमीर चंद, किशोर कुमार।

0: अच्छी बात है आयशा, डेली आप प्रोग्राम में शामिल हों, वेलकम कहेंगे आपको। अच्छा, बगैर नाम के जो आंसर्स मिले हैं मुझे वो भी दुरुस्त आंसर हैं। और जनाब यहाँ पर हम जाएंगे ब्रेक की जानी, ब्रेक के बाद अगेन आपको ज्वाइन करते हैं।
1: हर दिन जिंदगी की लहर GFM
2: नौशहरों
1: मीरपुर खास
2: लाड़काना
1: सखर
2: गूंज रही है हर जगह पर
1: सिंध की आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: खुशखबरी खुशखबरी अहां जे बारे जे बेहतरीन करियर आई रोशन मुस्तकबिल जे लाए सखर जो मशहूर आई मनियल इधारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज सखर पारा नर्सिंग आई फिजियोथेरेपी जे शोबन में नए सेशन लाए दाखिल।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चाय।

0: दानों की महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप, गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप,
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: बहजो शहर बहजो घर सकरंट, आई सकरंट जो आवाज
0: GFM 90.8।

सकलेन अब्बास कहते हैं कैसे हो, और बहुत शुक्रिया भाई सकलेन आपका। लड़काना से आपने हमें ज्वाइन किया, दा थैंक यू तो जी मेहरबानी तवा सा के ज्वाइन कयो। आसिफ राजपूत मीरपुर खास से नाइस शो है आज का, ओके बताने के लिए बहुत शुक्रिया। और जनाब जिसने भी ये टेक्स्ट किया है कि पर्सनल नंबर से बात करने का, तो माजरत ख्वाहूं। देखें आरजे का और लिसनर्स का जो ताल्लुक होता है ना वो माइक का होता है, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ में एडिशन जो है वो नामुमकिन सी बात है, और मैं माजरत ख्वाहूं पर्सनली जो है ना मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। और ये जब हमारा माइक ऑन होता है उस वक्त हम आरजे होते हैं, जब माइक ऑफ होता है हम आम इंसान होते हैं, हमारी भी रूटीन लाइफ होती है। तो मेरे सिलसिले में यानी कि आरजे गुलनाज से फोन पे बातें ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, मैं इसके लिए आपसे हाथ जोड़ के माजरत चाहती हूँ। आपका प्रोग्राम पसंद आता है, आवाज अच्छी लगती है, तो इसमें तमाम तर जो है वो रब की ही सारी की सारी कारीगरी है, मेरा कोई आर्ट नहीं है। तो जनाब मैं माजरत खाऊं, मैं पर्सनल नंबर से बातें नहीं कर सकती।

मोहब्बत की तिजारत में खसारा कौन देखेगा, मोहब्बत की तिजारत में खसारा कौन देखेगा, समंदर कौन देखेगा, किनारा कौन देखेगा, तुम्हें दिलकश बनाया है मेरी साहिर निगाहों ने, मेरे अंदाज से चेहरा तुम्हारा कौन देखेगा। ये कारजारे इश्क है अपने पराए एक हैं, तीर किसने किसको मारा कौन देखेगा, तो उछड़ेगा तेरे हमराह जाएंगी मेरी आंखें, तुम्हारे आने जाने का नजारा कौन देखेगा। तो आशिक है वो जाएगा अगर सोनी पुकारेगी, बिफड़ते तेज दरियाओं का धारा कौन देखेगा, जरा सा फासला होता है मिलने में बिछड़ने में, तेरी खातिर ट्रैफिक का इशारा कौन देखेगा। मोहब्बत की तिजारत में खसारा कौन देखेगा, समंदर कौन देखेगा, किनारा कौन देखेगा।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: DFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

लहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही। दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। पलती रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदहोशियों तक। अफसोस नहीं के अफसाने लिखे, वो अफसाने मबनी अफसुर्दगी पर। खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब, क्यों रही बहार की कमी बस। किस्मत हमारे ही हाथ में है, उस पे इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब दर्द उठे। हम तो भरेंगे दोस्त, वक्त की मरहम में शिफा है, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त, वो कब किसी के लिए रुका है। झुके ना सर फैले ना हाथ, हमारे अब बस यही दुआ है। कभी कभी आए सोच, जो हुआ वो ठीक ही हुआ है। सबर से सबक जो मिले हैं, सबर से अब मेरी सुलह है, कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है।

एक मिनट रुकी, मेरा वेट कर। ओके देन जफी भाई टेक वन, कहा सुना माफ कीजिएगा। शालीमार गार्डन में 5:30 बजे मेरा शूट के लिए हेयर एंड मेकअप, जल्दी मेरे शेड्स ला, लेकिन पहले चेक द पैरामीटर। गानों के बढ़ते डेसिबल, चेक पे बढ़ते डेसिबल, इट्स इनक्रेडिबल। मैं किस्मत चुगदाई, कैसे किस्मत को लाई, आई थिंक अबाउट दिस एट नाइट। Give a bash at the bed of the mansion, mad at my instinct, animalistic, mad magician, yeah, mathematician. I never take second position, I'm getting ballistic, cataclysmic, bilibulously, dekho meticulously. Love's my medicine, I'll say, love kiya maine kalam se, sach bola maine kasam se. Rang dekho kaise badalte, dikhte hain sabke, karte kab se, baatein pakki, baatein kacche. I've had enough of it, but I keep going. Got no option but to keep flowing, keep the toxic out of my zone. Dukkin tashreef apni off of my

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
1: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
2: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: अमेरिका ऐं ईरान विच में आबनाए हुरमस तां शुरू थियल छिकताण ख़त्म न थी। ॿिन्ही मुल्कनि जा हिक ॿिए जी थाकनि ते मिज़ाइल हमला जारी। अमरीकी फ़ौज जी लॻातार 5 कलाक ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते बमबारी। सेंटकॉम मूजिब बो शहर चाबहार जासक कनारक अबू मूसा ऐं बंदर अब्बास ते हमला कया विया। हमलनि दौरान ईरान जे दिफ़ाई निज़ाम ड्रोन ऐं मिज़ाइल थाकनि ऐं बहिरी सलाहियतुनि खे निशानो बणायो वियो। ईरानी फ़ौज जा बि अमरीकी अॾनि ते जवाबी हमला। बहरीन ऐं उर्दन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। पासदारान इनकलाब मूजिब बहरीन में अमरीका जे अलजफ़ीर वारे अॾे खे निशानो बणायो वियो आहे। आबनाए हुरमज़ पार कंदड़ ॿिनि ॿेड़नि खे बि नाकारा बणायो वियो।

सिंध में ज़रई पाणी जी खोट बरकरार, मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। हैदराबाद में बदीन ज़िले जे आबादगारनि जो पाणी खोट ऐं चोरी ख़िलाफ़ चीफ इंजीनियर कोटड़ी बैराज जे आफ़ीस आॾो एहतजाज। सुल्तानी वाह जे पुछड़ी जे आबादगारनि पाणी जे अथरादू खोट, चोरी ऐं कामोरनि जे नाजाज़नि ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। कंदकोट में बि क़ौमी अवामी तहरीक पारां मुरादवा में पाणी खोट ख़िलाफ़ डी सी आफ़ीस आॾो धरणो। टंडो ग़ुलाम अली वेझो बि पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि धरणो हयो। मुरादवा जे पुछण ते पाणी ॾियण जो मुतालबो। कड़ियो गहवर में बि आबादगारनि एहतजाज कयो। खैबर में बि एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई वई। लाड़काणे में बि अवामी वर्कर्स पार्टी पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। सिंध में 79 दवाउनि ऐं सिरिंज जा नमूना गैर मयारी ऐं जाली करार। सिंध ड्रग टेस्टिंग

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
2: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
1: अब दर्द को कहें अलविदा
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
1: जी हाँ,
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ये ऑइंटमेंट
1: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
2: दर्द, सोजिश
1: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
2: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
2: पट्ठों के खिंचाव,
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
2: और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
1: बहजो शहर, बहजो घर, सकरंट, आए सकरंट जो आवाज
2: जी एफ एम 90.8।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
1: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम,
0: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
1: ये मासर क्रीम मुतासर जगह पर तेजी से जज्ब होकर
0: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
1: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
0: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
1: गर्दन और कंधों के दर्द
0: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
1: सिर्फ मुतासर जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
1: फकीरी एनाल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें। सिंध के माथे का झूमर,
2: DFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं,
2: आप सुन रहे हैं
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: गर्मी हो रहा है, इंसान को घूमने कोई और बसता हो और किसी और को उम्मीद
1: दिलाता। मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इत्मीनान किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस हिसार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब

0: पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खा मेरी कसम।

0: बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को चलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींचड़ उछा लिया तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना।
0: मैं ना फिर रुकूंगी, सामने तमाशा बन गई मामा। अच्छा।

0: It's 8 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. दर्द, सोजन, वरम फौरी खत्म. आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.

बलोचिस्तान में खारजन खिलाफ ऑपरेशन शाबान जारी अज दहशतगर्द मारजी वह मारजी वेलन जो अंग वधी 85 थी वो सिक्योरिटी जरिए मूजिब सिक्योरिटी फोर्स के कार्रवाई दौरान दहशतगर्दन के गाड़ी के कामयाबी से निशानो बनाए बिन दहशतगर्दन के मारे वो पाक फौज एफ सी ए पुलिस जो गडल ऑपरेशन दौरान हवाई ए जमीनी कार्रवाई जरिए खारजन के निशानो बनाया पे वे ऑपरेशन शाबान ए बेन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमू तौर से 123 खारजी मारजी चुका। वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा सऊदी अरब से हमलन की मसम्मत खिते की अमुन ए इस्तेहकाम लाए कोशिशों जारी रखने जो ऐलान शहबाज शरीफ चो तो पाकिस्तान सऊदी अरब से मुकम्मल तौर से एके जो इजहार करे तो हमला सऊदी अरब की सलामती ए खुदमुख्तियारी खिलाफ़ हमलन से खिते जो अमुन इस्तेहकाम मुतासिर थी सके तो।

0: अमेरिका ऐं ईरान विच में आबनाए हुर्मुज़ तां शुरू थियल छिकताण ख़तम न थी। ॿिन्ही मुल्कनि जा हिक ॿिए जे थाकनि ते मिज़ाइल हमला जारी। अमरीकी फ़ौज जी लॻातार 5 कलाक ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते बमबारी। सेनकाम मूजिबि बो शहर, चाबहार, जासिक, कनारक, अबू मूसा ऐं बंदर अब्बास ते हमला कया विया। हमलनि दौरान ईरान जे दिफ़ाई निज़ाम, ड्रोन ऐं मिज़ाइल थाकनि बहिरी सलाहियतुनि खे निशानो बणायो वियो। ईरानी फ़ौज जा बि अमरीकी अॾनि ते जवाबी हमला। बहरीन ऐं उर्दन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो वियो। पासदारान इनकलाब मूजिबि बहरीन में अमरीका जे अल जफ़ीर वारे अॾे खे निशानो बणायो वियो। आबनाए हुर्मुज़ पार कंदड़ ॿिनि ॿेड़नि खे बि नाकारा बणायो वियो आहे। कराचीअ में रेंजर्स कैंप ते हमले में भारत मुलविस निकितो। हमले जी रिथाबंदी अफ़गानिस्तान में थियण जी तस्दीक। हमले जे मास्टर माइंड समेत समूरा सहूलतकार गिरफ़्तार। दहशतगर्दनि ॾोह जो बि एतिराफ़ करे वरितो। पुलिस ऑफिसरनि सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे गृह वज़ीर ज़ियाल अंजार चयो आहे त रेंजर्स कैंप ते 4 दहशतगर्दनि हमिलो कयो हो। 3 दहशतगर्द अफ़गानी ऐं 1 बाजोड़ जो रहवासी हो। रेंजर्स जे मास्टर माइंड कारी बशीर खे रेंजर्स गिरफ़्तार कयो आहे। SSP CTD चयो त हमले जी रिथाबंदी अफ़गानिस्तान में कई वई। दहशतगर्दनि में जाना, अब्दुल हादी, उमर फारूक ऐं उस्मान शामिल हुआ। दहशतगर्द उस्मान खे ज़ख़्मी हालति में गिरफ़्तार कयो वियो। दहशतगर्दनि खे अफ़गानिस्तान खां बलूचिस्तान रस्ते कराची पहुचायो वियो। दहशतगर्द मुल्क खे नुक़सान पहुचाइण चाहिनि था। कराची दहशतगर्दनि जे निशाने ते आहे। रेंजर्स ते हमले में मुलविस सभु जवाबदार गिरफ़्तार थी विया आहिनि। कराची में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त सिंध आलमी सीड़पकारी जो मर्कज़ बणिजी रहियो आहे। हुकूमत सीड़पकारनि खे बहितर माहौल फराहम करण लाइ पुरज़म आहे। कणिक ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवायूं करे रहिया आहियूं। हुकूमती कार्रवाइनि सबबि अटे जे अघ में इस्तहकाम आयो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

0: It's 8:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो GFM 90.8।
2: It's 9 PM. This time check is brought to you by
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News.

अमरीका ऐं ईरान विच में छिकताण वधीक तेज़ थी वई। अमरीका जे ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते बमबारी। ईरान जो बि जवाबी वार। सेंटकॉम मूजिबि बो शहर चाबहार, जासक, कनारक, अबू मूसा ऐं बंदर अब्बास ते हमला करे ईरान जे दिफ़ाई निज़ाम, ड्रोन ऐं मिज़ाइल थाकनि तोड़े बहिरी सलाहियतुनि खे निशानो बणायो वियो। ईरानी फ़ौज बि बहरीन ऐं उर्दन में अमरीकी अॾनि खे निशानो बणायो। पासदारान इनकलाब मूजिबि बहरीन में अमरीका जे अलजफ़ीर वारे अॾे खे निशानो बणायो वियो। आबनाए हुर्मस पार कंदड़ ॿिनि ॿेड़नि खे बि नाकारा बणायो वियो आहे। ईरानी क़यादत जी पॉलिसी ईरान खे मुकमल तबाहीअ जे रस्ते ते वठी वञी रही आहे। ईरानी बंदरगाहनि ऐं ईरानी कार्गो जी मुकमल नाकाबंदी लागू कंदासीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो त आबनाए हुर्मस में अच वञ ईरान खां सवाइ सभिनी लाइ आहे। आबनाए हुर्मस में तेल अघ खां वधीक मक़दार में सप्लाई अमरीका जी फ़ौजी ताक़त सां मुमकिन थी आहे।

वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां सऊदी अरब ते हमलनि जी मज़म्मत खिते जी अमुन ऐं इस्तेहकाम लाइ कोशिशूं जारी रखण जो ऐलान। शहबाज़ शरीफ चयो त पाकिस्तान सऊदी अरब सां मुकमल तौर ते एके जो इज़हार करे थो। हमला सऊदी अरब जी सलामती ऐं ख़ुदमुख़्तियारीअ ख़िलाफ़ आहिनि। हमलनि सां खिते जो अमुन ऐं इस्तेहकाम वधीक मुतासिर थी सघे थो। पाकिस्तान खिते जी अमुन सलामती ऐं इस्तेहकाम लाइ पंहिंजूं कोशिशूं जारी रखंदो।

फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो तुर्किया जो आला सतही सरकारी दौरो। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, तुर्किया के दिफा वाले वजीर ए तुर्क जनरल स्टाफ के सरबराह से धार धार मुलाकातों। तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने ते खेस गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश कयो। आईएसपीआर मौजूद मुलाकातों दौरान गडल दिलचस्पी वाले मामलों इलाकई सलामती ए दिफाई सहकार के ख्याल की डेवट कई वे। तब्दील थींदड़ जाग्राफियाई ए सियासी माहौल से भी गालियों। स्ट्रेटजिक भाईवारी मजबूत बनाने वालों अजम भी वरजाया वो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
2: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
1: अब दर्द को कहें अलविदा
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
1: जी हाँ,
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ये ऑइंटमेंट
1: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
2: दर्द, सोजिश
1: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
2: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
2: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
2: और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: मेरी जिंदगी थी वो।
1: मेरी जिंदगी है तू,
2: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
3: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
4: सुनते रहो GFM 90.8।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो एक वधिक यूटर्न आबना हुरमस ते 20% टैक्स लगाने वालों फैसलो वापस वी छो। डोनाल्ड ट्रंप है तो ईरानी क्यादत की पॉलिसी ईरान के मुकम्मल तबाही के रस्ते से वी वही रही है। ईरानी बंदरगाह ईरानी कार्गो की मुकम्मल नाकाबंदी लागू कंदी। आबना हुरमस ईरान का सवाल सभी लाइ खुल है। आबना हुरमस में तेल की अग का मकदार में सप्लाई अमेरिका की फौजी ताकत से मुमकिन थी है। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां सऊदी अरब ते हमलन की मज़म्मत खिते की अमुन ए इस्तेहकाम लाइ कोशिशूं जारी रखण जो ऐलान। वज़ीर आज़म चयो तो पाकिस्तान सऊदी अरब से मुकम्मल तौर ते एके जो इज़हार करे थो। हमला सऊदी अरब की सलामती ए खुदमुख्तियारी खिलाफ़ आहिनि। हमलन सां खिते जो अमुन इस्तेहकाम वधीक मुतासिर थी सघे थो।

फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो तुर्किया जो आला सतही सरकारी दौरो तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान तुर्किया के दिफा वाले वजीर ए तुर्क जनरल स्टाफ के सरबराह से धारदार मुलाकातों तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने ते खेस गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश कयो एस पी आर मौजूद मुलाकात दौरान गडल दिलचस्पी वाले मामलों इलाकई सलामती ए दिफाई सहकार के ख्याल की डेवट कई वही तब्दील जाग्राफियाई ए सियासी माहौल से भी गाल स्ट्रेटजिक भाईवारी मजबूत बनाने वो अजम भी वरजाया वो।